दोस्तों, ओस की बूंदें हमें एक सुंदर सीख देती हैं। उनका जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन जब तक वो रहती हैं, फूलों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी तभी सुंदर बनता है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनें।

आज का हमारा संकल्प यही हो, किसी का दिल न दुखाएं, किसी की उम्मीद न तोड़ें और जहां तक हो सके अपने शब्दों से खुशियां बांटें। कहते भी हैं, यदि आपके पास धन्यवाद कहने की वजह है तो समझिए आपके पास मुस्कुराने की भी वजह है।

आज सुबह ईश्वर से मांगने से पहले उनका धन्यवाद कीजिए, उस सांसों के लिए जो चल रही हैं, उस परिवार के लिए जो आपके साथ है, और उन सपनों के लिए जो अभी पूरे होने बाकी हैं।

देखते ही देखते आज की ये सुहानी सुबह अपने पड़ाव पर आ गई है। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई मुस्कान और नए सपने लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने साथी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि तदनुसार 8 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी समाचारों के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी सुनीता चौहान।

6:45 पर श्री रामचरित मानस कांड के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे अयोध्या कांड। 7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 7:30 कार्यक्रम होगा आज सवेरे देश विदेश की खबरें आप सुनेंगे। 7:30 हिंदी में सुबह 8:00 और अंग्रेजी में 8:15। पर म्यूजिकल दिल्ली की कार्यक्रम होगा जिसमें आप स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य, युवा वर्ग, रोड सेफ्टी जैसे विषयों पर बात सुनेंगे। प्रस्तुत करेंगी सुनीता चौहान।

इसी कार्यक्रम को फिर से 9:10 पर सुनवाया जाएगा। पेश करेंगी भावना संजीवा। 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को होस्ट करेंगी भावना संजीदा। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सैर करवाएंगे श्रीनगर शहर की। पेश करेंगी भावना।

12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अगस्त क्रांति दिवस, महिला स्वतंत्रता सेनानियां पर चर्चा, बेटियों को विरासत में सिर्फ गहने नहीं संस्कार भी दें, नारी शक्ति से विकसित भारत तक का प्रेरणादायक सफर विषय पर चर्चा, साथ ही मेहंदी की परंपरा केवल श्रृंगार नहीं आयुर्वेद और स्वास्थ्य का विज्ञान है। इसके साथ ही सावन के पारंपरिक व्यंजन स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना जैसे विषयों पर बातचीत होगी। प्रस्तुत करेंगी श्रुति पुरी और मंजुला प्रसाद। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 6:11 और 55 सेकंड। ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। शनिवार की सुबह साथ हूं मैं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

दलाई लामा कहते हैं, जब हम किसी के प्रति प्रेम और दया भाव रखते हैं तो सिर्फ उन्हें ही बेहतर महसूस नहीं होता, बल्कि इससे हमें भी आंतरिक शांति और खुशी मिलती है।

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा, आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका है कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। कहने का तात्पर्य ये कि आप बस अपना काम करते रहें, आलोचना पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ते रहें।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:35 और 56 सेकंड हो चले हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आज आप सुन रहे हैं सुनीता के साथ।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं और अब समय हो चला है रामचरितमानस गान का। आइए अयोध्या कांड से ये अंश सुनते हैं।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

और अब रामचरितमानस गान के बाद समय हो चला है समाचार का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद ठीक 7:10 पर एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात लेकर। तो फिलहाल समय है समाचार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित

7:10 और 50 सेकंड आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह समय है गोल्ड सुप्रभात का। हरी चूड़ियां, घेवर की मिठास और पेड़ पर बंधा झूला, इस विजुअल के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं आज के दिन की। वैसे कल की जो बारिश है हमें आज भी याद है, और मौसम विभाग का ये कहना है कि पिछले 15 सालों में ये जो अगस्त का पहला वीक होता है उसमें इतनी ज्यादा बारिश पिछले 15 सालों में नहीं हुई थी। तो मौसम का मजा लीजिए 1967 की फिल्म बहु बेगम के इस गाने के साथ। रोशन का संगीत, बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने और आवाजें लता मंगेशकर, आशा भोसले जी की।

इस गाने के साथ बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बारिश में भी हमें भीगते भीगते झूला झूलना बहुत पसंद था। वैसे बारिश के साथ हम सभी की कोई ना कोई याद जरूर जुड़ी रहती है। हिंदी फिल्मों में और गानों में भी बरसात के मौसम को अलग अलग अंदाज में पोर्ट्रे किया गया है, कभी रोमांटिक, कभी उदास और कभी हॉन्टिंग। पर इस मौसम का मजा अलग ही है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आज कैसा रहेगा मौसम का हाल? कल की तो बात हमने कर ली, बारिश ने बहुत परेशान किया, लेकिन आज के बारे में अगर आपके दिल में कोई सवाल है कि मौसम कैसा रहेगा, तो जवाब हमारे पास है। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान। बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना है हमारी पूरी दिल्ली में। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा मौसम का हाल, ये तो आगे पता चलेगा। ये है गोल सुप्रभात, मैं हूँ सुनीता।
1: दिन

लता मंगेशकर जी की आवाज में ये सॉन्ग था 1949 की फिल्म बरसात से। शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि जब बरसात होती है तो किसी की याद भी आती है और एक पुराना कोई दर्द जगा देती है, ये गाना उसी मूड का था। वैसे ये आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड है, आप जानते ही हैं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे ट्यून करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना और खूबसूरत नगमे आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। और आज आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे हमारे चैनल पर, उसका जिक्र अब कर लेते हैं। सुबह 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम होगा। श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर की जानकारी प्रोग्राम तस्वीर में आप लेंगे 11:10 पर। और दोपहर 1:10 पर प्रोग्राम होता है कलाकार बेमिसाल, तो आज उसमें बात हम करेंगे योगिता बाली जी की। तो ये तो जानकारी रही आज के प्रोग्राम्स की। और जो अब

गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसको सुनते हैं, फिर इस गाने के बारे में भी आपको बताएंगे और कुछ जो बातें रह गई हैं उन्हें भी आपसे साझा करेंगे।

0: अगर आप FM गोल्ड के रेगुलर लिसनर हैं तो आप पहचान ही गए होंगे इस गाने में जो आवाजें थी उनको। अगर नहीं पहचाने तो हम बता देते हैं कि ये फिल्म तो थी 1969 की प्यार का मौसम, और आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की थी। और आपको अगर ये गाना याद है तो क्या आपको ये याद है कि स्क्रीन पर कौन था? स्क्रीन पर थे शशि कपूर और आशा पारेख। फिलहाल इन बातों के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का। मैं लौट कर आती हूँ म्यूजिकल दिल्ली की के साथ थोड़ी देर बाद।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: क्या खूब लिखा है पंजाबी जबान की समृद्ध विरासत को अपनी लेखनी में बड़ी ही सुंदरता से सहेजे गायक सतिंदर सरताज ने कि इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जैसा कि पार्श्व में बज रहे इस सुंदर गाने के बोल भी हैं कि थकना या हारना इंसान की फितरत में नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि कोशिश ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहें अपने लिए, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए। श्रोताओं, आज की इस सुहावनी और हल्की भीगी सी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। टुडे इट्स 8th ऑफ अगस्त एंड यस, वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक वन। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द फाउंडेशनल इंजन
0: जी
1: व्हिच ड्राइव्स पर्सनल सक्सेस इफ वी टॉक अबाउट ग्रेट एंड इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। सो रीचिंग अ मेजर माइलस्टोन व्हिच आई थिंक एवरी इंडिविजुअल सेट्स फॉर देमसेल्व्स और बिल्डिंग अ करियर और मास्टरिंग अ स्किल व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, वेल हार्ड वर्क इज द की।
0: बिल्कुल। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हिंदी की एक कविता भी इसमें प्रसिद्ध तौर पर याद की जाती है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस उसके भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो श्रोताओं, आज की इस सुंदर प्रभात में इसी प्रेरणादायक प्रसंग के साथ कार्यक्रम आज सवेरे की शुरुआत करते हैं।
1: एंड मुकेश, आई थिंक वन डे यू विल, आवर लिसनर्स विल एंड एवरीबॉडी विल थैंक देमसेल्व्स फॉर नेवर गिविंग अप। सो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू थैंक योरसेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप बिकॉज़ अ ड्रीम डजंट मेक बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स हार्ड वर्क। सो विद दैट लेट मी टेल यू, First, we will be giving you the latest national international news. Then follows Metro City updates and why this day is special. We will also be exploring that. And then our much awaited segment, which is about the personalities.
0: जी बिल्कुल।
1: So there is a lot of interesting stuff which is coming up for you all listeners. Let's begin with the headlines straight away.
0: तो मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं शगुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल

0: policy makers and other stakeholders. Discussions will focus on strengthening the cooperative banking ecosystem and advancing the government's vision for a self-reliant cooperative sector in the country.
1: उधर झारखंड में जेपीएससी और जेपीएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई है। इससे जुड़ी और जानकारी हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: Payments Council of India (PCI) has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. It highlighted that UPI has become a critical national digital infrastructure used daily by many citizens. The PCI further noted that as transaction volumes continue to grow, sustained investment in security, resilience, innovation, fraud prevention and infrastructure will remain essential to ensure UPI reliably serves consumers and businesses for years to come.
1: और श्रोताओं, बात करते हैं खेलों की दुनिया की। तो कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालीहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर एक खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की है।

0: Wow, such a high-spirited song
1: for
0: our young achievers. So now let's stretch our boundaries a little. International update for our listeners. The US Senate has voted overwhelmingly to approve a bill to punish Russia and key buyers of its petroleum products, such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, it was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are top five importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. The bipartisan bill was championed by Republican Senator Lindsey Graham, who passed away on July 11th, and Democrat Richard Blumenthal.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो इस कड़ी में सबसे पहले हाल जानते हैं दिल्ली के समाचारों का। राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत अब तक 93,97,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कार्य संपूर्ण किया जा चुका है। अब तक 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। दिल्ली में घर घर जाकर प्रपत्र वितरित करने का कार्य जारी है। अभियान के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारी इस महीने की 17 तारीख तक प्रत्येक घर में जाकर

0: सभी मौजूदा मतदाताओं को सत्यापन और मतदाता सूची के अद्यतन के लिए पहले से मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष इको फ्रेंडली पर्यटन सर्किट तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में एक कॉन्क्लेव के दौरान इन सर्किटों को पेश किया जाएगा। सर्किट 1 में बंगला साहिब, सेकर्ड हार्ट कैथेड्रल, अग्रसेन की बावली, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम, वहीं सर्किट 2 में बिरला मंदिर, झंडेवालान, जंतर मंतर, जगन्नाथ मंदिर और योगमाया मंदिर को शामिल किया गया है। हनुमान मंदिर, जैन लाल मंदिर, अम्बेडकर मेमोरियल, पुराना किला और निजामुद्दीन दरगाह को सर्किट 3 में और रकाबगंज साहिब, बुद्धा टेम्पल, चर्च ऑफ रिडेम्पशन, मेहरोली आर्कियोलॉजिकल पार्क और छतरपुर मंदिर को सर्किट 4 में शामिल किया गया है। और मुंबई से जुड़े अगर हम समाचारों की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक की गड्ढों से भरी सड़कों की मरम्मत में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि खराब काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें भविष्य के सरकारी ठेकों से वंचित भी किया जा सकता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से 24 जुलाई 2028 तक आयोजित होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने शुक्रवार को मुंबई के लोक भवन में अग्निशिका सुषमा स्वराज पुस्तक के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया। मूल रूप से डॉक्टर मेधा सुमैया द्वारा मराठी में लिखित इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अमरजीत मिश्रा ने किया है। राज्यपाल ने पूर्व विदेश मंत्री को एक उत्कृष्ट नेता बताया जिन्होंने जनजीवन में अमिट योगदान दिया और महाराष्ट्र सरकार ने कट्टरता और हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने की चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 प्रकाशनों और प्रचार सामग्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम बात करें आगामी गणेश उत्सव के लिए तो महाराष्ट्र में राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC कोंकण क्षेत्र के लिए 5,220 अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा। ये विशेष सेवाएं 7 से 25 सितंबर तक चलेंगी। कम से कम 40 यात्रियों के समूह के लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से शुरू होगी, जबकि सामान्य बुकिंग पहले से ही खुली हुई है। 10 दिन के गणेश उत्सव की शुरुआत 14 सितंबर से होगी और मुंबई में ऐतिहासिक आर्टिस्ट सेंटर का वार्षिक मॉनसून शो भी शुरू हो गया है, जिसमें 45 वरिष्ठ कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। आयोजकों ने अगले वर्ष संस्थान की हीरक जयंती मनाने की भी घोषणा की है। उधर अगर कोलकाता की बात की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नबन्ना में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। NSG के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन, IG मेजर जनरल विकास चौधरी और ग्रुप कमांडर कर्नल PV शुक्ला ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। बैठक में सुरक्षा की स्थिति, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी तैयारियों और विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। अब श्रोताओं जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार शगुन से।
1: सो मुकेश, बिगिनिंग विद चेन्नई।
0: जी,
1: The third edition of the Contemporary Art Show will be held from today to 25th of August at Lalit Kala Academy. 66 artists from across the country, they are taking part in the art shows in 10 venues in the city. Priyanjali Basu, one of the directors, said that the show brings together a curation of artists who are spoken about in the country but also internationally. So the themes, they range across war, across politics and displacement to climate change, coast and local knowledge. We are straight away heading now to Bengaluru. The first update, Karnataka Textile Secretary Rohini Sindhuri expressed commitment to the promotion and development of the handloom sector in the state. She was speaking at the inauguration of 12th National Handloom Day organized in Bengaluru. She announced that the forthcoming Karnataka Textile and the other policies will foresee a special allocation to strengthen the livelihoods of weavers and position Karnataka's rich heritage in national and global platforms. The package will support design development, value addition, digital marketing, e-commerce and market expansion. The textile secretary stressed that the government is committed to modernize the sector and make it relevant to changing market demands.

0: This is the another update which we have from Bengaluru. The Central Silk Technological Research Institute and a Central Silk Board celebrated the National Handloom Day, and on this occasion distinguished and outstanding 6 handloom artisans were felicitated for their lifelong dedication towards preserving the traditional weaving traditions and significant contribution towards sustaining India's rich silk handloom heritage. The Central Silk Board featured its array of activities in the field of research and innovations in support of the silk handloom sector. The highlight of the celebration was live demonstration of silk handloom weaving, also exhibition of innovative silk products and launching of the Central Silk Board GI Map and GI Museum. So the silk handloom weavers, researchers, students, faculty members, industry representatives, they were part of the celebrations. Now we will focus on Hyderabad. Telangana IT and Industries Minister Dudela Sridhar Babu has said that the state government is working in a planned manner to introduce a digital assembly and digital council soon, speaking at the AI Transformation Conclave Telangana held at ITC Kakatiya in Begumpet. The minister said emerging technologies such as artificial intelligence, blockchain, data analytics and quantum computing will be given greater importance in governance. He said the government is taking several steps to make public services more efficient and accessible to citizens. Digital cabinet, a real-time government dashboard connecting 20 departments, AI-based data exchange and delivery of citizen services through WhatsApp. They are among the major digital governance initiatives. So listeners, these were Metro City updates for you all.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे शगुन और मुकेश के साथ। अब कार्यक्रम में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि बीती रात से ही अगर हम शगुन बात करें तो शहर में बारिश हो रही है और अभी भी शहर में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी है।
0: आई थिंक यस, हाँ।
1: तो ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक तरह से सुख और अगर हम बात करें थोड़ी चिंता की भी बात है, क्योंकि सुबह सुबह लोग जो हैं अपने कार्यालयों दफ्तरों में दुकानों पर कहीं कहीं पर जाते हैं तो ऐसे इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों ही तरह की बात है कि इसमें कुछ खुशी भी है और कुछ चिंता भी हमारी जो है उसमें मतलब निहित है।
0: Well, that is true. We are enjoying it as well.
1: बिल्कुल enjoy तो करना ही चाहिए।
0: Incessant rainfall does bring some greater perils with it.
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी लोग जाएं अपना दफ्तरों में कार्यालयों में तो अपने वाहन को सावधानी पूर्वक लेकर जाएं, ताकि क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर आपको पता ही है कि पानी बिल्कुल भरा रहता है और इस तरह से चीजें जो है सावधानी बरतने में ही जो है भलाई दिखाई देती है।
0: वी अंडरस्टैंड
1: जी। और अगर हम मुंबई के मौसम की बात करें तो उधर हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान उधर भी 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब आप जानकारी दीजिए शगुन हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम की।
0: सो मुकेश, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई अगेन, एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। सो इट्स गोइंग टू फील quite hot and humid in Chennai. Bengaluru looks a bit more pleasant with a generally cloudy sky with moderate rain. The temperature is likely to stay between 21 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle, and temperatures will likely range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. So it's set to be another warm day in Hyderabad as well. Mukesh.
1: कार्यक्रम में अब अगले भाग में बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 8 अगस्त को 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ आज ही की तारीख को घोषणा की थी। 1900 में बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत भी आज ही की तारीख को हुई थी।
0: 1923,
1: जी,
0: floods on the Ganga River and Jamna Rivers, they caused loss

0: ऑफ लाइफ इन बनारस इंडिया।
1: 1942 में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज ही की तारीख को की थी।
0: In 1949, India and Bhutan signed the Treaty of Perpetual Peace and Friendship. In 1955, Dr. Homi Bhabha was elected a chairman, in fact, of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy.
1: और 2010 में तेजस्विनी सावंत म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी।
0: Yes, जी, right.
1: श्रोताओं, समय है उन विशेष व्यक्तित्वों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, या आज जिन्होंने इस दुनिया से रुखसत की, आज जिनका जन्मदिन है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, अभी जैसा कि हमने हिस्ट्री सेक्शन में बताया कि महात्मा गांधी ने 1942 में आज ही की तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स या तथ्य हम जानते हैं।
0: Well, yes, the Quit India Movement launched on August 8, and as Mukesh told us, in the year 1942, this was a significant anti-colonial struggle. So imagine, India, in the year 1942, the world was at war. Britain was fighting for its survival, but India was still under British colonial rule. So across the country, anger was rising, hardships they were increasing, and the demand for freedom was becoming impossible to ignore. And then came a powerful call that would echo through India's freedom struggle: do or die. So these were the historic words of Mahatma Gandhi, marking the beginning of one of India's most significant anti-colonial movements, the Quit India Movement.
1: जी श्रोताओं, तो जैसा कि शगुन ने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, तो ये जो हम स्वतंत्रता आज हम देख रहे हैं, इन्हीं अमिट आंदोलनों की ही हमें देन है
0: जी।
1: तो इस स्वतंत्रता को हमें वैल्यू करना चाहिए, इसकी गरिमा का ध्यान रखते ही रहना चाहिए, और देश को सदैव तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए अपना अपेक्षित योगदान देना चाहिए।
0: हाउ ट्रू
1: जी। और अब बात करते हैं आज के दिन के विशेष व्यक्तित्वों के बारे में। तो आज जयंती है प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी की। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव पक्षधर रहे। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण से अलंकृत प्राप्त भीष्म साहनी का ये इंटरव्यू हम सुनते हैं प्रसार भारती आर्काइव से। अब
2: हम कोई भी साधु घर में आ जाए तो उससे सवाल पूछते हैं, आध्यात्मिक सवाल पूछ, अपनी जिज्ञासा पूरी करते हैं। ये जिज्ञासा का जो पहलू है, ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और बहुत खूबसूरत अंग मैं समझता हूँ। दूसरे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उनकी परिकल्पना करने वाला विराट के दर्शन कर रहा है, समूचे ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने है, और कहीं उसमें तंग नजरी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है, मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। वो किसी जाति विशेष के बारे में, देश विशेष के बारे में नहीं सोचते, वो समूची मानव जाति के बारे में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम
3: जी,
2: या सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें ये नहीं कहा कि मेरी जाति के लोग सुखी हों।
0: So Bhishma Sahani, well Mukesh, this iconic writer transformed the landscape of Hindi literature, and his works, they include novels, they include plays, short stories, essays as well. Tamas, you were talking about Tamas as well.
1: और जैसा कि अभी हम इनके साक्षात्कार में सुन रहे थे कि वे हमेशा समानता के पक्षधर थे
0: जी।
1: तो उन्होंने ये बात बोली कि लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, जाति और इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी से जुड़े एक हिंदी के और दलित विचारक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने भी एक बहुत अद्भुत बात लिखी है कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब मामन ही बामन। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि दोनों की प्रसव प्रक्रिया एक जैसी थी। तो ये कितनी बारीक बात है जो भीष्म साहनी ने भी अपने साक्षात्कार में कही।
0: Very deep and profound.
1: जी बिल्कुल।
0: Today we are also remembering Shirley Jackson, the writer. She is known primarily for her works of horror and mystery. Her writing career spanned over 2 decades, and she composed 6 novels and 2 memoirs as well, and more than 200 short stories. So she was a fiction writer and the contributor to Talk of the Town, and she actually began her career

0: as The New Yorker, with Jackson as a fiction writer and Hyman as a contributor to The Talk of the Town. I mentioned it. And after publishing a debut novel, The Road Through the Wall, a semi-autobiographical account of her childhood in California, she gained significant public attention for her short story, The Lottery.
1: श्रोताओं, आज जयंती है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य रहे बलबीर सिंह खुल्लर की। उन्होंने भारतीय टीम में इनसाइड फॉरवर्ड के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की और बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में अपने खेल का प्रदर्शन किया। बलबीर सिंह खुल्लर 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्हें 1999 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग ग्लेन कैंपबेल, द म्यूजिशियन एंड एक्टर। वी बेस्ट नो हिम फॉर हिज सीरीज ऑफ हिट सॉन्ग्स इन 1960s एंड 1970s, and especially this song, Southern Nights.

0: श्रोताओं, आज ही जयंती है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका सिद्धेश्वरी देवी की। उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की सम्राज्ञी माना गया था। सिद्धेश्वरी देवी को पहली बार 17 बरस की उम्र में सरगुजा के युवराज के विवाहोत्सव में गाने का अवसर मिला। उनकी बेटी सविता देवी भी प्रख्यात गायिका हैं। उन्होंने अपनी मां की स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है। इसके माध्यम से वे प्रतिवर्ष संगीत समारोह आयोजित कर वरिष्ठ संगीत साधकों को सम्मानित करती हैं। अगर हम बात करें सिद्धेश्वरी देवी को, तो उन्हें 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, साहित्य कला परिषद सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और संगीत नाटक अकादमी जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
1: टुडे इट्स आल्सो रॉजर फेडरर्स बर्थडे, द फॉर्मर स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, एंड ही वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स फॉर 310 वीक्स एंड फॉर नियरली 2 डेकेड्स। फेडरर हैज बीन अ लीडिंग फिगर, वी ऑल नो दैट, इन मेंस टेनिस alongside other players as well, collectively known as the Big Three with Rafael Nadal and Novak Djokovic. So a Wimbledon junior champion in 1998 and former ball boy, Federer won his first major singles title at Wimbledon in 2003. This happened at the age of 21.
0: और अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करें, तो जैसा कि आपने रोजर फेडरर के बारे में बताया, तो आज साइखोम मीराभाई चानू का भी जन्मदिन है। वो भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। उन्हें वर्ष 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में 201 किलो वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इससे पहले भी मीराबाई ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो की कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया था। वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। और आज ही श्रोताओं, जन्मदिन है गुजरात की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर लता देसाई का। इन्होंने साल 1980 में स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एंड एक्सनल रूल की स्थापना की थी। भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 60 के दशक की शुरुआत में बीजे मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात में बुनियादी चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद 1968 में वे शादी करने के बाद डॉक्टर लता देसाई उनके पति दोनों जो हैं वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 1972 में अमेरिका चले गए। अमेरिका में लता देसाई ने बाल रोग में विशेषज्ञता हासिल की, लेकिन भारतीय विचारक अगर हम कहें तो स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन कार्यों से प्रेरित होकर वे वापस भारत लौट आए और गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया में उन्होंने एक गैर लाभकारी सेवा ग्रामीण की स्थापना की थी।
1: Today it's also the musician, singer, songwriter Shawn Mendes' birthday. Well, he gained a following 2030. He actually started posting song covers on the video sharing platform. There was a video sharing platform, and there he gained followers.
2: Try to sedate it, but that never works. Yeah.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार की मतभेद हमेशा बारिश के समान होने चाहिए जो बरस कर समाप्त हो जाएं, लेकिन हमारा प्रेम और विश्वास जो है हवा के समान होना चाहिए जो दिखाई भले ना दे लेकिन हमारे साथ रहे। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति मुकेश और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
6: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और

0: पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: We have seen the comments.
2: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: Regulate the flow of foreign funds.
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
1: While we are coordinated,
2: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की

0: आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथानामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: seven districts. More details from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: Rain warnings have continued in all districts of the state for more than 7 days. Today, orange alert indicating the possibility of isolated very heavy rainfall has been declared in Kasaragod, Kannur, Wayanad, Kozhikode, Kottayam, Alappuzha and Pathanamthitta districts. Yellow alert is in force in all the other districts in Kerala. Moderate rainfall has been occurring across all districts of the state since midnight. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: In Odisha, a low-pressure area is likely to form over the Bay of Bengal today, triggering widespread rainfall across the state, with schools closed across Mayurbhanj district. Today, as a precaution and several rivers rising, concerns over fresh flooding have increased in the rain-affected districts. More from a correspondent.
2: Heavy rain is likely to continue across Odisha as a low-pressure area is expected to form over Bay of Bengal today. The India Meteorological Department has issued an orange warning for 6 districts and a yellow warning for 24 districts for casting heavy to very heavy rainfall at several places. The orange warning districts are Sundargarh, Jharsuguda, Bargarh, Sambalpur, Keonjhar and Mayurbhanj. All schools in Mayurbhanj have been closed today as a precautionary measure in view of the heavy rain forecast. Meanwhile, the rising water level of the Jalaka River in Basta of Balaswar has heightened the flood threat in the district. Authorities are keeping a close watch on the situation while people in vulnerable and low-lying areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The US Senate has voted to approve a bill to sanction Russia and key buyers of its petroleum products, such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Trump's administration to impose 100% tariff on goods from countries that are top 5 importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. On to sports. In badminton, Indian shuttler Ashmita Chaliha will face compatriot Rakshita Ramaraj in the women's singles semi-finals of the Korea Masters Super 300 tournament in Asan this morning. Ashmita Chaliha and Rakshita Ramaraj won their respective quarterfinal matches to advance to the semi-finals. Ashmita pulled off the biggest upset of the tournament, defeating top seed and world number 22 Hina Akechi of Japan. Rakshita also rallied from a game down to beat third seed and compatriot Tanvi Sharma to book her place in the last four. At the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships in Tashkent, India's Thitli Maji clinched a silver medal in the women's 45kg category, marking an impressive start for the country. She secured the medal with a total lift of 145kg, comprising 65kg in the snatch and 80kg in the clean and jerk. Parishmita Gogoi finished fourth in the same event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Anuja. A Hindustan Times headline says, MEA rebuffs US lawmakers' criticism on FCRA bill, says it's India's internal matter. As part of the center's strategy to counter China's repeated attempts to rename places of the Indian side, the Times of India cites, in snub to China, government maps 27 Arunachal border locations with standard names. And finally, the Hindu carries a story marking a major leap in human-wildlife conflict management with AI-driven digital sentries bringing new hope to Kerala's high-risk forest zones in repelling wild animals with 100% success rate. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies APEC Digital Payments Body, PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over 5 countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे पीसीआई ने वजाहत की है कि यूपीआई लेनदेन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 PhD स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
4: वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कम्प्यूटिंग सहूलत प्राम प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद तरीन सहूलत से इदारे की AI डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग और मुख्तलिफ मजामीन पर मबनी तहकीकी सलाहियत में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि IIT दिल्ली में हमेशा ही तहकीक और इख्तिरा के शोबों में आला ताउन दिया है। न्यू डेस्क से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
3: भारत की रकूम के लेनदेन से मुतालिक कौंसिल PCI ने ऐलान किया है कि UPI सारिफीन के लिए मुफ्त ही रहेगा। कौंसिल ने एक बयान में तस्दीक की है कि हर भारतीय लेनदेन पर बगैर कोई चार्जेस दिए डिजिटल वसीले से रकूम का फौरी लेनदेन कर सकता है। कौंसिल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कारोबारी डिजिटल वसीले से कोई रकम हासिल करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। PCI ने यह भी कहा कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और RBI टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तिरा के मैदानों में UPI की मोतबरियत को बरकरार रखने के लिए सरमाया लगा रहे हैं। PCI ने वजाहत की है कि कारोबारी खिदमात पर आयद ऐसे कोई भी चार्जेस जो कारोबारियों और रकूम फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान महज कारोबारी इल्तजामात हों, उनका मतलब यह नहीं है कि ये चार्जेस सारिफीन डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए अदा कर रहे हैं। उसने खास तौर पर कहा है कि UPI एक ऐसा अहम कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है जिसे बहुत से शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजियों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते खलीज खित्ते में भारतीय मिशन जहाजरानी की वजारत और समुद्र से मुतालिक हुकाम के लगातार राबते में है। उन्होंने कहा कि भारत बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी व तिजारत के लिए कहता रहेगा। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन दिफा के समझौते के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई समझौते के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत और भूटान ने बिजली के शोबे में दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद को दोहराया है। बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकज

0: लाने का अज़्म किया। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NUCFDC के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वो शहरी कोऑपरेटिव बैंक की फेडरेशंस और महाराष्ट्र की जिला एसोसिएशनों के नुमाइंदगान के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान NUCFDC और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एक दूसरे को मुफाहमतनामे भी सौंपेंगे। ये इश्तराक शहरी इमदाद बाहमी के बैंकिंग शोबे में साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों और सनती सलाहियत को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा करेगा। जनाब शाह बाद में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ BSE बैन अलाक्वामी कन्वेंशन मरकज में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। GPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान कल देर शाम झारखंड हुकूमत और तलबा के वफद के दरमियान पहली बाकायदा बातचीत हुई। इस दौरान इस मामले की छानबीन और सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकरीबन डेढ़ घंटे तक जारी इस मीटिंग में तलबा ने भर्ती इम्तिहानात में शफाफियत के अपने मुतालबे को दोहराया और मुबैना बेजाब्तगियों, गैर जानबदाराना जांच पड़ताल और भर्ती के अमल में जामे इस्लाहात की मांग की। बातचीत में चार रियासतों के वुजरा और तरक्याती कमिश्नरों ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। वुजरा ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुतालबात के बारे में मुस्बत कदम उठाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मीटिंग के दौरान उठाए गए तमाम मामलात को वजीर आला के सामने पेश किया जाएगा। तलबा ने बातचीत को मुस्बत करार दिया लेकिन कहा कि उनका धरना और भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि उनके मुतालबात से मुतालिक तहरीरी फैसला नहीं किया जाता और ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इस दौरान वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार तलबा की तशवीश के तई हसास है और बातचीत के जरिए मामले को हल करने की पाबंद है। बीजेपी के पार्लियामानी रुकन निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर 13 अगस्त तक इस मामले को कोई ठोस फैसला नहीं किया जाता तो CBI के जरिए छानबीन कराए जाने की कोशिशों को तेज किया जाएगा। इस दौरान CID ने, जो इस मामले की छानबीन कर रही है, 14वें JPSC प्रिलिमिनरी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 मौजूदा अरकान को पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। CID ने इस ताल्लुक से अब तक 19 अफराद को गिरफ्तार किया है और छानबीन का दायरा बढ़ता जा रहा है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: अमरीकी सेनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस और उसकी पेट्रोलियम मसनूआत के खरीदार मुल्कों पर बंदिश लगाई जाएगी जिनमें चीन और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी सेनेट ने दावा किया है कि इस तरह की तिजारत से यूक्रेन जंग को हवा मिलेगी। इस बिल का नाम बदलकर रूस और ईरान पर पाबंदी लगाने वाला लिंडसे ओ ग्रहम का 2026 बिल रखा गया है जिसे सीनेट ने 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल की रूह से सदर ट्रंप इंतजामिया को यह इजाजत मिल गई है कि वो उन मुल्कों से अपने यहां आने वाली अशिया पर 100% महसूल लागू कर दें जो रूसी तेल और गैस के 5 सरकर्दा बरामदकार हैं। इस बिल के साथ ही ईरान पर आयद बंदिशों के 1996 के कानून को 2031 तक तौसी हासिल हो जाएगी। इस कानून के तहत उन कंपनियों पर जुर्माना आयद है जो ईरान के तवानाई शोबे में सरमाया लगाते हैं। ऐसे मौके पर जबकि मुल्क असीमा यौम आजादी मनाने की तैयारियां कर रहा है, इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देही खुद के रोजगार तरबियती इदारे RSETI उधमपुर में तरबियत हासिल करने वाली 30 खवातीन और लड़कियों को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाथ से कौमी परचम, तिरंगा के मौजू पर मबनी लवाजमात और सजावटी सामान तैयार करके हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दिया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है।
2: रियासत के सभी अजला में रेल से मुतालिक तंबी पिछले 7 दिनों से जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाना इस बात का इशारा है कि इक्का दुक्का मकामात पर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कासरगोड, कन्नूर, वियानाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापोजा और पत्तनम तिट्टा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बकिया अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। केरालम और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार

0: हवाएं चलने का भी इम्कान है। रियासत के सभी अजला में आधी रात से औसत दर्जे की बारिश जारी है। थिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ओडिशा में खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है, जिसके बायस रियासत भर में वसी पैमाने पर बारिश हो सकती है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के बायस बारिश से मुतासर इलाकों में सैलाब के अंदेशे में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर मयूरभंज जिले में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: आज खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने के इम्कान के साथ ही ओडिशा में शदीद बारिश जारी रहने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बालासोर के बस्ता इलाके में जलाका दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब जिले में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज सुबह आसन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज अपने मुतालिका क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। अश्मिता ने जापान की आला दर्जे की आलमी नंबर 22 खिलाड़ी हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया, जबकि रक्षिता ने तीसरे सीट की अपनी हमवतन खिलाड़ी तन्वी शर्मा को 18-21, 21-19, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ताशकंद में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने मुल्क के लिए शानदार कारकर्दगी का आगाज करते हुए खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम के साथ कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर यह तमगा जीता है। इसी जुमरे में परश्मिता गोगोई ने चौथा मकाम हासिल किया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म आज IIT दिल्ली की 97वीं तकसीम इस्नाद तकरीब में मेहमान खुदूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। जनाब मोदी डिग्रियां अता करने के साथ होनहार तलबा को इदारे के सबसे बावकार इजाजात से नवाजेंगे और खिताब भी करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में CBI की तरफ से 94 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें CBI ने दावा किया है कि पेपर लीक की साजिश कई माह कबल रखी गई थी और माहरीन ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवालात याद कर लिए थे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का मुकरमा में एक तारीखी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी एक पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वीर किया जाएगा। रोजनामा इनकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर दी है कि ईरान से बातचीत जारी है और जंग जल्द खत्म हो जाएगी।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और 53 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली के लिए परफेक्ट टाइम है ये 100.1 MHz पर। यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। मैं हूँ सुनीता और शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर जी का ये डुएट है और फिल्म थी फरार। राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: में बारिश के सीक्वेंस कितने अच्छे लगते हैं ना, लेकिन जब हद से ज्यादा बारिश होती है जैसे कल रात थी, तो जगह जगह पानी भरने के कारण ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं। अब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने में जो परेशानी होती है ना, उसकी तो क्या ही बात करें। पर इस सब के बीच हमें गाहे बगाहे बारिश में भी जो भीग रहे होते हैं लोग, उनको देख कर जो खुशी मिलती है और वो जो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो मन करता है हम भी कुछ ऐसा करें। तो अगर आपका ऐसा कुछ इरादा है तो इन गानों को एंजॉय करते रहिए। हमारे साथ ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, और आज साथ हूं मैं आपके सुनीता।

लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म मंजिल का ये गाना स्क्रीन पर हमें देखे थे अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी भीगते हुए झमाझम बारिश में। अब बारिश ना हो तो आने का, तो जब हो रही हो तो बंद हो जाने का, ये इंतजार हम करते ही रहते हैं। वैसे जो ये इंतजार है ना, वो चीज ही ऐसी है। देखिए ना, अब मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत और करना होगा इंतजार अगले शनिवार का कि मैं फिर आऊं और आपके लिए ढेर सारे गाने प्ले करूं। तो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, स्टूडियो से, लेकिन आपके लिए मैं प्ले करूंगी ये दिल्ली फिल्म से ये गाना, लता मंगेशकर जी और कुमार सानू का ये डुएट है, बहुत ही प्यारा है। अगले सैटरडे फिर मिलूंगी, तब तक आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान

0: विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और उस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोलकाता स्थित रविन्द्रनाथ ठाकुर के पैतृक निवास जोरासांको, ठाकुरबाड़ी और शांति निकेतन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में आज बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. Our correspondent reports that the Prime Minister will present the Institute's most prestigious honours, including the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

सपनों में खोने को बहुत समय मिल जाता है। सपनों में खोने को बहुत समय मिल जाता है जब दिल के आंगन में तुम सा कोई आ जाता है। लगता नहीं दिल फिर कहीं और, जब दिल में कोई और बस जाता है। कहती है धड़कन धीरे से, ये कौन मेरे मन में समाता है, ये कौन मुझे खुशी देकर जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वो लोग जुदा नहीं होते दिल से जो दिलों में जगह बना लेते हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन असर बड़ा डालती हैं। जैसे कि आने वाले वाहन को हाथ दिखाकर रोकते हुए किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराता एक इंसान। एक बार उसे हम देखते जरूर हैं, कभी रास्ते में अचानक किसी के आ जाने पर एकदम से ब्रेक लगा देना ताकि उसे चोट ना लग जाए। ऐसा करना तभी मुमकिन है जब वाहन की रफ्तार काबू में हो। सड़क नियमों का पालन करते हुए हम सिर्फ अपनी नहीं बहुत से लोगों की जान बचाते हैं, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करिए, खुश रहिए और हमेशा याद रखिए कि आपका कोई इंतजार कर रहा है।

आज है 8 अगस्त और आज का दिन है बहुत ही खास। आज के दिन प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी की जयंती हर साल मनाई जाती है। 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था और इनके खास लेखन के लिए इनको जाना जाता है। तमस, बसंती, झरोखे, कड़िया, मायादास की माड़ी, ये इनके लिखे हुए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, वासंती और अगर नाटकों की बात करें तो कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, हानूस, ये सब इन्हीं के द्वारा रची हुई रचनाएं हैं। बहुत ही खास हमारे लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी की जयंती को आज के दिन मनाया जाता है।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दशमलव एक में कहा हर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 9:36 हो गए हैं। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

अपने दोस्त साथी सब खुश हो, सब खुशहाल हो, इसके लिए जीवन में प्यार अपनेपन की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है पैसा। नौकरी होना, रोजगार होना बहुत जरूरी है, और सरकार भी यही चाहती है कि हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारी जनता के आने वाली पीढ़ी है, उन सबको रोजगार मिले, सब खुशहाल बने। 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है उसको शुरू किया गया, उसकी प्रभावी प्रमुख सरकारी पहल हुई। 15,000 रुपए तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि उन नौजवानों को, उन युवाओं को देना इस योजना के अंतर्गत जिन्हें पहली बार नौकरी मिली है, इसका उद्देश्य है। यानी जिन्हें पहली बार नौकरी मिली हो उन युवाओं को 15,000 रुपए तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि और देना, और 2 वर्षों के भीतर 2025 1 अगस्त से 2 वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो कुल मिला के जितने भी रोजगार पाने वाले युवा हैं, उनके साथ साथ रोजगार सृजित करने वाली जो कंपनियां हैं, वो सृजित जो करती हैं, वो संस्थान जो हैं, उनको भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। क्योंकि जब नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे तभी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, है ना। तो इस टोटल ओवरऑल जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हमारे युवाओं के लिए, जिन नई नौकरी करते हैं, पहली नौकरी जिनकी लगती है उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन है, और उन सभी संस्थानों के लिए, उन सभी कंपनीज के लिए जो रोजगार सृजित कर रही हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन की योजना है।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जलवा तो देखने लायक था हर उस क्रांतिकारी का, हर उस देशभक्त का जो देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। अगस्त क्रांति दिवस है आज। हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। 8 अगस्त 1942 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। नारा था करो या मरो। महात्मा गांधी इस क्रांति का आगे बढ़ चढ़कर लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग की थी और देश के लोगों ने इस आह्वान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा और निर्णायक मोड़ था। आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के नाम से हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है।

इसी के साथ म्यूजिकल दिल लगी से भावना आपसे लेती है विदा। मैं कहीं नहीं जा रही, 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे

0: लोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honors, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर अमेरिका के एक सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है।

0: दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: We have seen the comments.
2: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
1: While we are coordinated,
2: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रस्तावित भारत श्रीलंका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इंटरकनेक्शन और संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने सीमा पार बिजली व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और भूटान ने भी विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योम्पो जेम शेरिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और जल विद्युत विकास, सीमा पार विद्युत व्यापार, पारेषण संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर बात की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस तथा चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को भारी मतों से पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट।
4: लिंडसे ओग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के रक्षा विभाग ने पूर्व वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल की गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। उन्हें किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्त किए जाने से भी रोक दिया गया है। एयरफोर्स वन की क्षमताओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी कथित तौर पर मीडिया के साथ साझा करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कोटे डी आईवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस अफ्रीकी देश के साथ अपने करीबी पुराने और दोस्ताना रिश्तों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी से पता चलता है

0: कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सद्भावना के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। कोटे डी आइवर 7 अगस्त 1960 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। बैठक में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसमें भविष्य में सांस्कृतिक सहयोग के लिए साझा दिशा और रोड मैप तय किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूक नियंत्रण के लिए नए कानून लाने का वादा किया है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक किशोर द्वारा की गई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने के बाद ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: 14 वर्ष के इस किशोर ने पहले अपने घर में दादा दादी की हत्या की और फिर वो नोनथाबुरी के डेबिरसिरिन में अपने स्कूल गया। स्कूल में उसने 5 शिक्षकों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। बाद में एक घायल छात्र की भी मौत हो गई। हमले के बाद प्रधानमंत्री अनुतिन चरण विराकुल ने कहा कि वो ऐसे कानून लाने की योजना बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाएंगे। नए कानून के अंतर्गत सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को ही बंदूक रखने की अनुमति होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में आम नागरिकों के पास बंदूक होने की दर थाईलैंड में सबसे अधिक है। यहाँ नागरिकों के पास लगभग 1.3 करोड़ हथियार हैं। माना जाता है कि इनमें से लगभग 40 लाख हथियार गैर कानूनी तरीके से रखे गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं आपके साथ भावना। बता देते हैं आपको, आप ईमेल हमें किस एड्रेस पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप हमें किस नंबर पे कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी है हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868867353। और लीजिए, शुरुआत हो गई है, बरसात हो गई है मैसेजेस की और ईमेल्स की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का बहुत ही प्यारा सा संदेश हमें मिला है। इसके अलावा बल्ली मारन दिल्ली से शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद और सूफिया नवाब का संदेश हमें मिला है। गाना सुनना चाहते हैं ये।

होस्ट मैडम जी खुश रहें, स्वस्थ रहें जी, ये हमें लिखकर भेजा है सुनील पाठक जी ने। कमल पाठक हैं, दीपिका मल्होत्रा हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं, सुच्चा सिंह पाठक हैं, तो इन सब ने बहुत शुभकामनाएं हमारे लिए लिखकर भेजी हैं। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा प्रोग्राम सुनते रहें ऐसे ही। टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी।

दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, ये सब मुझे लिखकर भेज रहे हैं। नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे या संजय बमारकंडे और बेबी किट्टू का बहुत ही प्यारा सा संदेश हमें मिला है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनके पूरे परिवार का हमें संदेश मिला है। गाना सुनना चाहते हैं ये।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये। मैं हूँ आपके साथ भावना। प्रोग्राम का नाम दिल का मेल बॉक्स और आप सब हमारे साथ। नमस्कार, हमें लिखकर भेजा है, लिख रहे हैं, आज के कार्यक्रम का आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम भी बहुत खूबसूरत होगा। हम हैं गोल्ड के पुराने श्रोता मनोहर लाल गांधी, सत्य प्रकाश गोयल, प्रकाश चंद गोगिया, भगवती सोलंकी, प्रेम गुरु बाजार सीताराम दिल्ली से। सचमुच आपके नाम पढ़कर आपको अपने साथ महसूस करके बहुत अपनापन और बहुत अच्छा लगता है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गॉड जी का संदेश हमें मिला है। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, गाना सुनना चाहते हैं ये।

साधना गोयल का संदेश हमें मिला है। श्रीपाल गोयल जी हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजेंद्र जटोलिया हैं, उषा जटोलिया हैं, ये दिल्ली नांगलोई से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, इनका संदेश नई दिल्ली से आया है। और कौन है, नवी हसन साहब है, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया, अंजुम खान, ये सब है। मारहरा दरवाजा एटा से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा संदीप मक्कड़ हैं हमारे साथ, ज्योति मक्कड़ हैं, मन्नत मक्कड़ हैं, भारत मक्कड़ हैं, कमल सानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से संदेश हमें भेज रहे हैं। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हैं चंडीगढ़ सिटी से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नई दिल्ली से उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा का संदेश हमें मिला है। बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म चिराग से, और ये रहा आपकी पसंद का गीत।

दिल के मेल बॉक्स में आपका और हमारा आज का सफर यहीं तक। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। 3000 से अधिक विद्यार्थियों में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन का आयोजन बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी

0: कारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंड से ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। पूर्वी क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए भी ओणम विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology Delhi today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honors, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Payments Council of India has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, Payments Council affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The Payments Council of India added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर। मैं हूं आपके साथ भावना और आज हम रेडियो तस्वीर बनाएंगे खूबसूरत श्रीनगर की। श्रीनगर को प्राकृतिक उद्यानों, खूबसूरत झीलों और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढका श्रीनगर सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत और गर्मियों में बहुत ही हरा भरा दिखाई देता है। अगर आप सर्दियों की ठंडी हवा का मजा लेना चाहते हैं तो सर्दियों में आपका यहाँ स्वागत है, और अगर इस मौसम में आप श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो शिकारा सवारी और घुड़ सवारी ये आपका स्वागत कर रही हैं, आपको बुला रही हैं। आज आपको श्रीनगर के बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे और वहां की रेडियो सैर करवाएंगे।

डल झील ये श्रीनगर की रौनक है। ये झील 26 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। डल झील सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच में है, इसीलिए इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। सोच के देखिए, आंखें बंद कीजिए, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं और बीच में खूबसूरत डल झील। यहाँ पर नाव की बोटिंग, हाउस बोट और झील के आसपास मौजूद बाजार पर्यटकों को बहुत बहुत आकर्षित करते हैं। आपको बता दें, जो डल झील में हाउस बोट का आइडिया था ना, ये अंग्रेजों का था जो आज तक चला आ रहा है। अगर आप श्रीनगर में घूम रहे हैं और डल झील नहीं पहुंचे हैं तो आपको पहुंचना चाहिए। यहाँ पर आपको जो फील मिलेगी ना, वो बहुत बहुत अलग होगी, बहुत खूबसूरत होगी। श्रीनगर, डल झील, ये कश्मीर की शान है।

मुगल गार्डन श्रीनगर के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। मुगल काल के दौरान मुगलों ने कई तरह के उद्यान बगीचे यहां पर बनवाए जिन्हें मुगल गार्डन कहा जाता है। यहां पर आपको हरे भरे सुगंधित फूल और यहां की खुशहाली, यहां की हरियाली अपनी ओर आकर्षित करेंगे, बुलाएंगे। सचमुच बहुत बहुत खूबसूरत हैं ये सारे गार्डन्स। यहाँ ना मुगल गार्डन में आपको निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही,

परी महल, अचबल, बेरीना गार्डन, बहुत सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे। मुगल गार्डन में आप फारसी वास्तुकला का प्रभाव भी देख सकते हैं और इन सब गार्डन्स की क्या खासियत है ना, ये भी बताएंगे। पहले दिल को छू लेने वाले इस मुगल गार्डन को जरा महसूस तो कर लें, किस तरह से दिल को मन को छू रहा है ये।

श्रीनगर का शालीमार बाग जो वसंत ऋतु में शरद ऋतु में बहुत खूबसूरत लगता है, किसी भी ऋतु में ये सुंदर बगीचा इतना आकर्षित लगता है कि यहाँ आकर फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुके, पूरी खूबसूरती को निहार लें, आंखों में भर लें और फिर ही आगे बढ़ेंगे। परी महल जो यहाँ पर है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने इसे बनवाया था, जो अपने प्रेम के

लिए जाने जाते थे। इसके अलावा मुगल गार्डन में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजों के अलावा निषाद गार्डन, जिसकी हमने बात की थी ना, चिनार के पेड़ों से सुशोभित है और फोटोग्राफी के लिए ये जगह स्वर्ग है। सब पर्यटक यहाँ आकर अपनी अपनी फोटोज जरूर खींचते हैं। क्या क्या और खास है श्रीनगर में, बात करेंगे इसकी। मिलते हैं छोटी सी मशहूरियों के पास।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

चेहरे पर मुस्कान खिलखिलाहट अपने आप आ जाती है जब कुछ इतना खूबसूरत देखने को मिले जैसे कि बादाम वारी उद्यान। यहाँ पर ना हजारों बादाम के पेड़ हैं। कल्पना कीजिए कि हजारों बादाम के पेड़ हैं जिन पर छोटे छोटे सफेद फूल खिले हुए हैं और उन फूलों को देखकर आपका मन ललचा रहा है। वो फूल बादाम में परिवर्तित हो जाएंगे ऐसा सोचकर ही मन में रोमांच आता है और कभी कभी तो आप उनको बादाम की शेप में भी बनता हुआ देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं और वो बादाम का जो पेड़ है वो किस स्थिति में पहुंचा है, कौन सा स्टेज है बादाम बनने का, तो वो जो है वो डिपेंड करता है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना खूबसूरत पूरा का पूरा उद्यान है, ये जितने भी हमने बागों की बात की है ना उन सब में मतलब मुझे तो ये सबसे खूबसूरत लगा था। बाकी आप देखिएगा कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी ज़्यादा लगी श्रीनगर की।

वुलर झील एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में आती है। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। जब इस झील में पानी भरता है ना, तो यहाँ पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स, वाटर स्कीइंग ये सभी एक्टिविटीज करने आते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन जाता है। यहाँ आकर वो घंटों बैठते हैं और आनंद लेते हैं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

प्यार से याद आया कि बहुत ही प्यारे से श्रीनगर में एक छोटा सा हिल स्टेशन है यूसमार्ग। इसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। ये मिनी हिल स्टेशन बहुत ही रोमांटिक प्लेस है और इसी वजह से यहाँ बहुत सारे कपल्स आते हैं, न्यूली वेड्स यानी नवविवाहित जोड़े भी आते हैं। यूसमार्ग हिल स्टेशन ना श्रीनगर से 47 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप बेहद शांत जगह में आराम से समय बिताना चाहते हैं अपने जीवन साथी के साथ तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है।

बहुत ही खूबसूरत है श्रीनगर और यहाँ की सब जगह। जो परी महल हमने आपको बताया था ना, पैलेस ऑफ फेयर इसके नाम से भी ये बहुत ही मशहूर है। हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ से पूरे डल लेक और श्रीनगर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा श्रीनगर की जामा मस्जिद, यहाँ पर भी पर्यटक घूमने जाते हैं। आर्किटेक्चर और धार्मिक महत्व दोनों के लिए इसे जाना जाता है। हजरत बल दरगाह, ये मार्बल स्ट्रक्चर है और यहाँ अलग सा सुकून मिलता है लोगों को आकर, पर्यटकों को आकर। शंकराचार्य मंदिर कश्मीर घाटी का सबसे पुराना और जाना माना मंदिर है। पर्यटक जब श्रीनगर आते हैं तो शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जरूर जाते हैं। ये मंदिर 1100 फीट ऊपर एक पहाड़ी चोटी पर है और शंकराचार्य मंदिर को मुख्य रूप से उसके अंदर रखे शास्त्रों के लिए जाना जाता है। और चश्मे शाही ऊंचाई पर मौजूद एक खूबसूरत पार्क जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है श्रीनगर में। यहां से अपना शानदार घाटी का नजारा देख सकते हैं। खूबसूरत झरनों के साथ लोग फोटोज खिंचवाते हैं और ये जगह श्रीनगर के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक मानी जाती है, चश्मे शाही।

सचमुच मौसम बहुत ही खूबसूरत श्रीनगर का हर समय। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन यहाँ का 46 प्रकार के फूल और भी हैं ट्यूलिप के अलावा, जो आप यहाँ देख सकते हैं शंकराचार्य पहाड़ी, यहाँ पर भी लोग आते हैं। सिंथन टॉप है, कश्मीर गर्मियों में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं तो सिंथन टॉप आ सकते हैं। कुल मिलाकर श्रीनगर इतना खूबसूरत है कि किसी भी रूप में उसकी मिसाल दी ही नहीं जा सकती, वो अपने आप में अनोखा है।

इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। 12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
1: वो अकेली नहीं आती है, मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है।
2: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and JSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing the students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant

0: घर आंगन
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
2: और मैं हूँ श्रुतिपुरी। स्वीकारिए हमारा प्यार।

0: आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
1: और मैं हूँ श्रुतिपुरी। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: और श्रुति, सावन की हरियाली, रिमझिम फुहारों की ताजगी, तिरंगे की शान से सजा स्वतंत्रता सप्ताह और आने वाले त्योहारों की मधुराहट, यही तो है हमारे देश की खूबसूरती।
1: कहते हैं उम्मीद की

0: चार गाने जो आपके मन को रिमझिम फुहारों जैसा सुकून देंगे।
1: तो मुस्कुराइए, क्योंकि हर मौसम बदलता है, हर कठिनाई गुजर जाती है और उम्मीद हमेशा जीवन को नई दिशा देती है। और हाँ, आज का सवाल, देश की प्रगति में हम किस तरह का योगदान दे सकते हैं, ये आपको बताना है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoalga@gmail.com। आपके मेल्स का रहेगा हमें इंतजार।

0: इतिहास रचा। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो के माध्यम से अंग्रेजों की पाबंदियों को चुनौती देते हुए पूरे देश तक क्रांति की आवाज पहुंचाई। यही तो भारत की ताकत थी। जब एक एक नागरिक ने ये ठान लिया कि अब आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं,
1: और भारत छोड़ो आंदोलन भले ही तुरंत स्वतंत्रता ना दिला सका दोस्तों, लेकिन उसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं है। यही वो चिंगारी थी जिसने 5 वर्ष बाद स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित कर दिया।
0: और आज अगस्त क्रांति दिवस पर आइए उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी केवल एक अधिकार नहीं है, ये उन लाखों बलिदानों की अमूल्य विरासत है जिसे हम अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने राष्ट्र प्रेम में सहज कर रखते हैं।
1: बिल्कुल, और जिनकी सांसों में वतन बसता था, जिनकी धड़कनों में हिंदुस्तान था, वे चले गए इतिहास बनकर, तभी तो आज हमारा भारत महान था।
0: चलो ऐसे जीवन जिए कि देश को हम पर भी नाज हो, तिरंगे की हर लहराती शान में हमारे कर्मों का भी छोटा सा अंदाज।

0: सुजाता फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे थे।
1: और दोस्तों, आज 8 अगस्त है, भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया संकल्प दिया। यह है अगस्त क्रांति दिवस यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन, और देशवासियों को एक मंत्र मिला, करो या मरो।
0: मंजुला, साल था 1942। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत से अंग्रेज हर तरह का सहयोग चाहते थे, लेकिन आजादी देने का उनका कोई इरादा नहीं था। देश का धैर्य अब जवाब दे चुका था।
1: और फिर आया 8 अगस्त 1942 का ऐतिहासिक दिन। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हजारों लोग एकत्र हुए, हर चेहरा उम्मीद से भरा था, हर दिल में आजादी की लौ जल रही थी। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए, किसानों ने विरोध का बिगुल फूंका, मजदूरों ने हड़ताल की, गांव गांव और शहर शहर में आजादी की आवाज गूंजने लगी।
0: और इस क्रांति में हमारी वीरांगनाएं भी किसी से पीछे नहीं रही। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा फहराकर साहस का नया इतिहास

0: शहीद फिल्म में अभी आप मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और राजेंद्र मेहता को सुन रहे थे।
1: और आज का सवाल एक बार फिर से कि आप अपने देश के प्रगति के लिए प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको मेल भेजना है। हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और श्रुति, सावन की मधुर फुहारों और आजादी के जश्न से भरे इस विशेष वीक में हम याद करेंगे उन वीरांगनाओं को, उन वॉरियर क्वींस को, जिन्होंने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा बल्कि भारत की आजादी की नींव अपने साहस, त्याग और बलिदान से मजबूत की। जरा सोचिए, जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भड़की, तब क्या सिर्फ पुरुष ही रणभूमि में थे? बिल्कुल नहीं। भारत की बेटियां भी तलवार, भाला और अदम्य साहस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। तो अब हम बात करेंगे वॉरियर क्वींस की।
0: हाँ मंजुला, तो सबसे पहले बात आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ये पूरे देश के आत्मसम्मान की आवाज बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और वीरांगना थी झलकारी बाई। वे रानी की महिला सेना दुर्गा दल का नेतृत्व करती थी। युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया ताकि लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल सके। उनके इस साहस ने इतिहास की दिशा ही बदल दी।
1: बिल्कुल सही। और इसी तरह रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी तब भी आत्मसमर्पण करने की बजाय वीर गति को चुना। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। अवंती बाई की विश्वसनीय अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने भी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। इतिहास के पन्नों में उनका नाम भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन उनका साहस किसी से कम नहीं था।
0: और मध्य प्रदेश के धार की रानी द्रौपदी बाई ने 1857 के विरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों का डट कर सामना किया। और मंजुला, अब तुम्हें दक्षिण भारत की यात्रा कराते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित युद्ध छेड़ने वाली भारत की पहली रानी मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अद्भुत रणनीति से अंग्रेजों को चुनौती दी।
1: और श्रुति, कर्नाटक की रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कई बार विजय प्राप्त की। समुद्री सुरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के सामने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया।
0: और देखो, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को कौन नहीं जानता। अक्सर उनके उत्कृष्ट शासन और जन कल्याण के लिए उन्हें याद किया जाता है, लेकिन वे एक निर्भीक शासक भी थी जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया और महिलाओं के नेतृत्व का एक आदर्श स्थापित किया। और जब बात होलकर वंश की हो रही हो तो भीमा भाई होलकर का नाम भी गर्व से लिया जाता है।
1: तो दोस्तों, इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। अनगिनत ऐसी वीरांगनाएं थी जिनके बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। तो आज जब हम स्वतंत्रता दिवस सप्ताह का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए अपने बच्चों को इन वीरांगनाओं की कहानियां सुनाएं।

0: परदेश फिल्म में अभी आप हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन को सुन रहे थे। और मंजुला, अब हमें लेनी होगी,
1: तो चलिए
0: तो सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले ये मेल मैं उठा रही हूँ। ये मेल है नवीन भाटिया जी की और ये लिखते हैं कि आप अपने टैक्स टाइम पे भर के देश की सेवा कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक लिखा है। और जानती हूँ एक ऐसी ही मेल एक और आई है और ये लिखने वाले हैं अनिल मेहता। ये लिख रहे हैं, हम ईमानदार नागरिक बनकर टैक्स समय पर भरकर और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करके देश का विकास कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ लगाएं और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित और सशक्त बनाने में मदद करें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अफरोज शेख लिखते हैं कि जो भी काम करते अपने तरफ से देशभक्ति के लिए करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं देश के बारे में, वो भी एक देशभक्ति है। ऐना लिखती है कि देश की प्रगति सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपना काम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सब मैं करती हूँ अपने देश की प्रोग्रेस के लिए।
0: और तुम जानती हो कृष्ण कुमार क्या लिख रहे हैं भटीपुरा महोबा से। ये लिखते हैं कि हम अनुशासन में रहते हुए देश के संसाधनों का अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करके, पानी बिजली का उपयोग आवश्यकतानुसार करके, कूड़े को कूड़ेदान में डालकर और अपने सभी बिलों का भुगतान समय पे करके, अपने देश के पर्यटन स्थलों की सैर करके, अर्थव्यवस्था में सुधार करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। कितना बढ़िया लिखा
1: है। बहुत बढ़िया। और साधना गोयल जी भी लिखती हैं कि देश की प्रगति में योगदान और अपने कर्तव्यों और नियमों का पालन कर सकते हैं, देश के संविधान और नियमों का पालन करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी बिजली सबकी बचत करें।
0: और देखो सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी, ये शांति नगर सोनीपत से लिख रही हैं और ये लिखती हैं कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें, बिजली पानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग सोच समझ कर करें, साफ सफाई का और वातावरण को स्वच्छ रखने का ध्यान रखें और आप सभी का दिवस शुभ हो।
1: और संदीप राय जी लिखते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने काम व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है, अपने प्रोफेशनल या बिजनेस में गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखना। ये मेल काफी लंबा है लेकिन मैंने इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट ले लिया।
0: और देखिए जो हमें डॉक्टर राजेश्वर राय लिख रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए, अपनी डिग्निटी अपने राइट्स के लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्राइम को करप्शन को और अनसेफ कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए और हमें लॉफुल चैनल के साथ ही चलना चाहिए।
1: और सुगंधा राव भी लिखती है कि प्रमोट कम्युनल हार्मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडियाज डाइवर्सिटी। बहुत ही खूबसूरत मेल इनका भी है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे मेल्स भेजने के लिए।
0: और देखो आप गाना भी तो सुनवाना है ना, तो आइए सुनते हैं येसुदास की आवाज में ये गीत, फिल्म है सावन को आने।

0: दोस्तों कहते हैं बेटी जब विदा होती है तो उसके साथ सिर्फ एक डोली नहीं जाती, एक पूरे परिवार की परवरिश, सोच और संस्कार भी उसके साथ चलते हैं। हम अक्सर अपनी बेटियों के लिए सोना चांदी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर सबसे बड़ी विरासत का नाम पूछा जाए तो क्या गहने होंगे या फिर वे संस्कार जो हर मोड़ पर उसका साथ देंगे।
1: क्योंकि मंजुला, सोने के गहने तो कभी भी चोरी हो सकते हैं, टूट सकते हैं या समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। बेटी का विरासत में केवल आभूषण नहीं, उसको आत्मसम्मान दीजिए, उसे ये सिखाइए कि किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा के साथ कभी समझौता न करे।
0: उसे शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने फैसले स्वयं ले सके। उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उसे ये भी सिखाइए कि दूसरों का सम्मान करे, लेकिन अपनी आवाज दबाकर नहीं। ना कहना भी एक संस्कार है और अन्याय के सामने खड़ा होना भी।
1: बेटी को करुणा दीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी अच्छाई का लोग लाभ उठाने लगे। उसे विनम्र बनाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपना आत्मसम्मान खो बैठे, अपना आत्मविश्वास खो बैठे। उसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने परिवार की जड़ों से जोड़िए, क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वही जीवन में सबसे बड़े तूफान में भी अड़िग खड़ा रहता है। याद रखिए, माँ बाप की सबसे बड़ी पहचान बेटियों के गहनों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जब लोग कहते हैं बेटी को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं।

0: तो समझ लीजिए यही सबसे अनमोल विरासत है ना
1: बिल्कुल सही। और आज समय बदल रहा है, बेटियां आसमान छू रही हैं, इतिहास रच रही हैं, देश का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित भविष्य नहीं सशक्त व्यक्तित्व भी दीजिए। क्योंकि विरासत केवल वो नहीं होता जो तिजोरी में रखा जाए, विरासत वो भी होता है जो चरित्र में दिखाई दे, व्यवहार में झलके और पूरी दुनिया में आपकी परवरिश की पहचान बन जाए। सोने चांदी के गहने समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, संस्कारों के गहने पीढ़ियों तक परिवार का नाम रोशन करते हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी रिवाज।
1: और श्रुति, जब एक स्त्री, एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी बदल जाता है। और यही सोच आज के भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति दे रही है।
0: देखो मंजुला, एक समय था जब महिलाओं की पहचान केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज वही महिलाएं अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, सीमा पार विज्ञान में नए कीर्तिमान बना रही हैं, व्यवसाय चला रही हैं, गांवों में परिवर्तन ला रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहां भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय ना दिया हो?
1: बिल्कुल, चाहे कृषि हो या AI, शिक्षा हो या उद्यमिता, खेल हो या राजनीति, हर क्षेत्र में नारी शक्ति भारत के विकास की नई इबारत लिख रही है। आज लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्म

0: निर्भर बन रही है। छोटे छोटे गांव की बेटियां अपने हुनर से परिवार ही नहीं पूरे समाज की तस्वीर बदल रही हैं। महिला उद्यमी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। महिला किसान आधुनिक खेती अपना रही हैं।
1: हाँ देखो, महिला वैज्ञानिक नई खोजों से देश का भविष्य सुरक्षित बना रही हैं और हमारी बेटियां सेना, न्यायपालिका, प्रशासन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन केवल उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं है मंजुला, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर बेटी को समान अवसर मिलेगा।
0: बिल्कुल, जब शिक्षा हर लड़की का अधिकार बनेगी, जब सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन केवल शब्द नहीं बल्कि हर महिला की वास्तविक पहचान होंगे।
1: देखो, एक शिक्षित महिला केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करती है। एक आत्मनिर्भर महिला केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। और एक आत्मविश्वासी महिला केवल अपने सपने पूरे नहीं करती बल्कि समाज की सोच भी बदल के रख देती
0: है।
1: क्या
0: बात है। तो आज आवश्यकता केवल महिलाओं को अवसर देने की नहीं बल्कि उनकी क्षमता पर विश्वास करने की है। बेटियों को ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर सकती, बल्कि उनसे कहिए तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव वही होगी जहां बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर, समान सम्मान और समान विश्वास मिले।

0: अभी हम सुन रहे थे कविता सेठ को, फिल्म थी नीरजा।
1: और मंजुला, कुछ मेल हमारे पास आई हैं जिन्हें हमने लेना है। ये मेल हमारे पास आई है गौरी शंकर जी की, नांगलोई से लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम। और ये लिख रहे हैं, जिंदगी में कोई गलत काम ना करें, हमारे देश में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने कामों के साथ लोगों में प्रेरणा दी है और उनको देखकर शिक्षा भी मिलती है, तो हम उनकी शिक्षा पर अमल करें, किसी को दुख न दें।

0: हो सके तो अच्छा काम करें।
1: और पीहू पुंडीर जी लिखती हैं देहरादून से कि मेरा मानना है कि देश का विकास केवल बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम करके उसमें योगदान दे सकते हैं।
0: और एक मेल आया है योगी दीक्षित जी का पीतमपुरा से, ये लिखते हैं कि देश के सभी नागरिक अपने दायित्व का पालन पूर्ण प्रामाणिकता के साथ और ईमानदारी से करें, यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, यही देशभक्ति है।
1: बहुत बढ़िया, तो चलिए फिर से रुख करते हैं सावन की तरफ। श्रुति, सावन का महीना, हरियाली, झूले, गीत और हाथों पर रची गहरी मेहंदी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेहंदी केवल सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की एक अनमोल देन भी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों सदियों से भारतीय परंपरा में मेहंदी को इतना महत्वपूर्ण माना गया।
0: बिल्कुल, देखो सावन आते ही हर घर में महिलाओं के हाथों में मेहंदी रच जाती है। तुमने मेरी हरी चूड़ियां देखी है, देखी है,
1: बहुत सुंदर।
0: ये मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है ना, उतना ही प्रेम और सौभाग्य मिलता है। लेकिन इसके पीछे केवल मान्यता नहीं, विज्ञान भी छिपा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आयुर्वेद के अनुसार मेहंदी की तासीर शीतल होती है। बरसात के मौसम में जब उमस और गर्मी के कारण शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तब मेहंदी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाती है। हथेलियों और पैरों के तलवों पर इसे लगाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और मन को भी बड़ी शांति मिलती है।
0: और यही कारण है कि प्राचीन भारत में विवाह, तीज, करवा चौथ और सावन जैसे अवसरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा विकसित हुई। ये केवल श्रृंगार नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक प्राकृतिक उपाय भी है।
1: इतना ही नहीं, मेहंदी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। बालों में मेहंदी लगाने से सिर को ठंडक मिलती है, रूसी कम होता है और बालों को प्राकृतिक चमक भी बनी रहती है।
0: लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें, आजकल बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट या जो ब्लैक मेहंदी होती है ना, इनमें कई रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो त्वचा पर एलर्जी, जलन और दाने पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक मेहंदी का ही चुनाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जहां हर रीति रिवाज के पीछे जीवन को बेहतर बनाने का कोई न कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य वर्धक कारण छिपा होता है, मेहंदी भी उसी ज्ञान की एक सुंदर मिसाल है जो हाथों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ शरीर और मन को भी सुकून देती है।
0: तो इस सावन जब आप अपने हाथ पर मेहंदी रचाएं तो याद रखिए, ये केवल रंग नहीं बल्कि हमारी आयुर्वेदिक विरासत का एक स्पर्श है।

0: मेहंदी रंग लाएगी। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं
1: और इसी गीत के साथ आज की इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। सावन का आनंद लीजिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो दीजिए मंजुला और
0: श्रुति बुरी को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा

0: आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and GSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cyber security, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. 7 people were killed and 11 were injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. The accident occurred near Chalwanj Moore at Bairagarh Antatisa police station in the Churaha assembly constituency. The identities of the 7 people who lost their lives in the accident are yet to be ascertained. According to the State Emergency Operations Centre, the accident took place at around 7:15 a.m. today. Preliminary information suggests that the private bus was travelling from Bairagarh towards Chamba when it went off the road near Chalwanj Moor and fell onto another road below. Prime Minister Modi expressed grief over the loss of lives due to the mishap. In a social media post, Mr. Modi condoled the families who have lost their loved ones in the incident.

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है और आज अपने कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जिनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जिनके खून में अभिनय था और जिन्होंने 70 के दशक में लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। तो आज हम कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में किसकी कहानी लेकर आए हैं, तो आज हम जिक्र करेंगे योगिता बाली का और मैं संगीता रहूंगी आप सभी के साथ। आपसे कहना यह है कि मौसम तो बहुत अच्छा सा हुआ है, बस रेडियो के जरा अपने करीब रखिए और देखिए कितने खूबसूरत गीत हम आपको सुना रहे हैं और बहुत सारी बातें भी बताएंगे हम आपको योगिता बाली के बारे में।

तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा योगिता बाली को। और मेरी नज़र जो है बार बार खिड़की के बाहर जा रही है, मुझे नहीं पता आपकी तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, पर

यहाँ तो खूब अच्छी सी बारिश हो रही है और मैं थोड़ा सा गाना सुन ले रही हूँ और थोड़ा खिड़की के बाहर देख ले रही हूँ कि मौसम कितना अच्छा है। जाहिर सी बात है, सावन को सावन जैसा लगना भी तो चाहिए ना, सावन का महीना है तो बारिश तो होनी ही चाहिए। और इतने खूबसूरत मौसम में, इतने अच्छे मौसम में अगर किसी इतनी ही खूबसूरत अदाकारा का जिक्र हो तो फिर क्या कहने, नहीं? तो बात है साल 1971 की। बॉलीवुड में एक नई लड़की ने कदम रखा, नाम था योगिता बाली, लेकिन उनके लिए ये फिल्मी दुनिया बिल्कुल भी नई नहीं थी। तो वो गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली की भतीजी थी और लोग बाग उनके चेहरे में गीता बाली की झलक देखा करते थे। तो योगिता ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म परवाना से। इस फिल्म में उनके साथ थे अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल। इसी साल आई गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने। फिल्म तो सुपरहिट रही और इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को ये भी समझ में आया कि ये जो नई लड़की आई है ये बॉलीवुड में कुछ न कुछ कमाल जरूर करेगी। फिलहाल आपके लिए झील के उस पार फिल्म से ये गीत।

आज हम याद कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में योगिता बाली को और उनके खूबसूरत गीत सुन रहे हैं और ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है और अगर आप कहीं रास्ते में अगर सफ़र भी कर रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, अगर घर में आप नहीं है, सफ़र भी कर रहे हैं, तो अगर गीत अच्छे हो तो सफ़र बड़ा खूबसूरत हो जाता है। नहीं मतलब मुझे तो अगर लगता है कि अगर ट्रैफिक में हैं और कम से कम गीत अच्छे बन रहे तो सुकून रहता है कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा है। और यही अच्छा देने की कोशिश हमारी है कि कुछ अच्छा आप तक लगातार पहुंचाते रहे। तो दोस्तों, योगिता पाली के फिल्मी सफ़र की अगर बात करें तो उनका फिल्मी सफ़र कुछ सिर्फ जो है कुछ फिल्मों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपने करियर में करीब 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और 1974 में उनकी जिंदगी ने एक कहा जाए कि नया मोड़ लिया, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म आई थी विदाई और उनके अपोजिट थे जंपिंग जैक यानी जितेंद्र, और इस पारिवारिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। योगिता बाली रातों रात हर घर का जाना पहचाना चेहरा बन गई थी और इसके बाद उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया, फिल्म कौन सी थी, बनारसी बाबू, और राजेश खन्ना के साथ काम किया फिल्म अजनबी में, धर्मेंद्र के साथ काम किया चाचा भतीजा में, और ऐसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय के लगभग जितने बड़े बड़े हीरो थे उन सभी के साथ योगिता बाली ने स्क्रीन शेयर किया।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: वक्त हो चला है 1:30 और 52 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। और आज हम जिक्र कर रहे हैं योगिता बाली का। और हमने आपको बताया, हाँ, अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो फिर जुड़े रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे खूबसूरत गाने हम आपको सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे योगिता बाली के बारे में। तो कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी था। हुआ ये कि 1976 में निर्देशक राजकुमार कोहली ने एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था नागिना। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, बिल्कुल सही कहा आपने, वही रीना रॉय वाली नागिन, जिसमें रीना रॉय जो है नागिन की भूमिका में थी। और इस फिल्म में योगिता बाली ने भी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार रोल निभाया था। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। और उस समय योगिता बाली कमर्शियल सिनेमा की पहली पसंद बन गई थी। तो चलिए सुनते हैं चाचा भतीजा से ये गीत।

Roberti. मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जैसे ख्वाब, हादसा और कराटे। पर्दे पर काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए और दिल दे बैठे। और जब दिल दे बैठे तो 1979 में दोनों ने शादी कर ली।

तो हमने आपको बताया कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली दोनों एक दूसरे के करीब आए, प्यार हुआ, इकरार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद योगिता बाली की प्राथमिकताएं बदल गई तो उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली और साल 1989 में आई फिल्म आखिरी बदला उनके अभिनय सफर की आखिरी बड़ी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कैमरे की चकाचौंध को अलविदा कह दिया और अपने परिवार को संभालने में व्यस्त हो गई। योगिता बाली का फिल्मी सफर जो है वो शानदार रहा, जिसमें कई यादगार किरदार रहे और उन्होंने हमें बेहतरीन फिल्में दी।

वैसे आज योगिता बाली भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन 70 के दशक की उनकी फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं।

ये वक्त हो चला है इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे कहना ये है आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, और समाचारों के बाद 2:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम संगीत.com। तो बने रहिए गोल्ड के साथ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद कफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमरीका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फायदा पहुंच सकता है और किस तरह जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। जनाब मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर नस्ल को अपने ज़माने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा है कि इस इदारे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 बरसों में उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद कफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: जनाब मोदी ने तलबा से कहा है कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है, बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है।

अब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने जेपीएससी और जेएसएससी की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। ये मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफद सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वफद और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनाकिद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हुदूद में चालुंज मोड़ के करीब बीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाइयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 के करीब पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी, जब ये चालुंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलव्विस 2 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से IED आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलव्विस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मंसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA की खसूसी अदालत में दायर की गई। मुलजमान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि यह खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई, जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओनम त्योहार के लिए ऐलान करदा खसूसी ट्रेन खिदमात की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। खसूसी खिदमात ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमरीका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हैंडिक हेमेंस ने 80.50 मीटर के थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता।
जनूबी कोरिया के आसान में जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

0: अश्मिता चहलिहर खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हीना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the centre of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit.
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: Mr. Modi also spoke about distractions in the age of social media. He said students should avoid comparing themselves with others on the basis of salary packages, jobs, or sectors in which they are working. Mr. Modi said life is not a leaderboard and one's journey is not a competition.

0: Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का,

0: लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया।

19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:30 और 57 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है संगीत.com और संगीत.com में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। और आज मैं जिस तरह के गाने लेके आई हूँ ना, वो कमाल के गाने हैं। और अभी आपको पता है क्या हुआ, अभी आधे घंटे से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, धूप बल्कि आ गई थी। और अभी जब मैंने पलट के खिड़की के बाहर देखा तो मैंने देखा कि ओहो, बिल्कुल झूम के बादल आ गए हैं। और काले बादल बस बरस नहीं रहे हैं तो बरसने वाले ही हैं जल्दी। और मुझे लगता है कि मौसम को इंतज़ार है कि आज हम क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, या फिर मौसम इस तरह से है कि वो चाहता है कि भाई हम खुश रहें, और हम खुश रहेंगे तो हम अच्छे गाने सुनाएंगे आपको। चलिए, तो किस गाने से कार्यक्रम की शुरुआत करें? तो बड़ा प्यारा सा गाना चुन के लाई हूँ मैं आपके लिए, और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत है। और इस गाने की मज़ेदार बात पता है क्या है, सिर्फ बिना किसी रिहर्सल के 9 मिनट में इस गाने को कुमार सानू ने रिकॉर्ड कर लिया था। और इस गाने की शुरुआत में ना एक ख़ास तरह का वो आलाप लेते हैं जो उस समय युवाओं में बड़ा ट्रेंड कर गया था। और उसके बाद तो कुमार सानू के कई ऐसे गीत आए जिसमें वो शुरू में आलाप लेते हैं और बाद में उस गीत को गाते हैं। और आपने कुछ गेस किया किस गाने की हम बात कर रहे हैं? तो चलिए हम आपको सुना ही देते हैं।

फिल्म दीवाना और एक कमाल की फिल्म, और इस फिल्म के सारे गाने कितने कमाल के हैं, है ना। और जब इंटरवल के बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है इस फिल्म में, ओ हो, बिल्कुल दिल धड़कना शुरू हो जाता है। नहीं, चलिए एक और खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाएंगे, और नदीम श्रवण का संगीत है, और जो गीत लिखा है वो समीर ने लिखा है, और इसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन जो है फीमेल वर्जन, वो अनुराधा पौडवाल ने गाया था, और दूसरा जो मेल वर्जन

हुई हैं और पियानो बजा रही हैं और इस गीत को गा रही हैं, तो आपने कुछ अंदाजा लगाया हम कौन सा गीत सुनाने जा रहे हैं आपको? साजन फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: नदीम श्रवण और गुलशन कुमार एक प्राइवेट एल्बम तैयार कर रहे थे और एल्बम का नाम भी रख लिया गया था चाहत। और जब उसके गानों की रिकॉर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और जब गुलशन कुमार ने इन गानों की रिकॉर्डिंग सुनी तो वो गाने उन्हें

ने ज्यादा पसंद आए कि उन्होंने एल्बम का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया और उन गानों को लेकर निर्देशक महेश भट्ट के पास पहुंचे और उनको धुनें सुनाई। और धुन सुनने के बाद, आपको पता है आशिकी फिल्म की कहानी जो है धुन सुनने के बाद बुनी गई है, यानी उन गानों के इर्द गिर्द को, इर्द गिर्द जो है कहानी को, आशिकी फिल्म की कहानी को बुना गया है। तो इस तरह से आप सोचिए कि एक फिल्म तैयार होती है गानों को ध्यान में रखकर कि ये गाने किसी फिल्म का हिस्सा होना चाहिए ना कि एल्बम का। और जब कुमार सानू ने इस फिल्म के गानों को गाया था तब तो वो छा गए थे पूरी इंडस्ट्री पे और रातों रात उनकी आवाज जो है वो पूरे देश में गूंज उठी थी और बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए थे कुमार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: NCRPEE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

चलिए आपको एक प्यारा सा किस्सा सुनाते हैं। और किस्सा यूं है कि दिल फिल्म की शूटिंग हो रही थी और आमिर खान डांस स्टेप कर रहे थे और डांस स्टेप करने में उनकी जीन्स फट गई। और जब जीन्स फट गई तो हुआ यूं कि सेट पर दूसरा जीन्स था ही नहीं जो उन्हें दिया जाए। और उस समय मतलब रीशूट करना या शूट को जो है पोस्टपोन करना भी पॉसिबल नहीं था। तो जो डायरेक्टर थे इंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि भाई आप इस फटी जीन्स के साथ ही पूरा शॉट कीजिए और ये जो है थोड़े उसके बेपरवाह स्वभाव को दिखाएगा।

तो पता है क्या हुआ, आमिर खान इस बात पे नाराज तो बहुत हुए कि भाई ये क्या बात है कि मुझे फटी जीन्स पहन के डांस करने को कहा जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने डांस किया वो हिट रहा और उसके बाद तो वो ट्रेंड चल पड़ा और आज देखिए रिप जीन्स का फैशन है ना।

दिल फिल्म का ये गाना हमने सुनाया और किस्सा भी सुनाया, और आपको पता है आमिर खान इस बात पे बहुत नाराज हुए थे कि उन्हें फटी जीन्स पहन के डांस करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन देखिए हीरो पर्दे पर जो करता है वो कमाल करता है और वो फैशन हो जाता है, और वो फैशन हो गया और फैशन यूं हुआ कि आज तो फटी जीन्स ही फैशन है, जिसे हम रिप जीन्स कहते हैं, है ना। तो 90s के गाने जो है ना, सच में ऐसा लगता है जब 90s के गाने बजते हैं तो लगता है कि बस आंख बंद

करके और इन गानों को बस महसूस किया जाए और कोई काम ना करे, बस आराम से बैठे। और मौसम अगर सावन का हो तो फिर कहना ही क्या, क्या बात है, बारिश हो रही है, आपके हाथ में एक कप चाय हो गर्मा गर्म और 90s के गाने हो। जिंदगी में और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आपसे कहना यह है कि आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का। तो संगीता को इजाजत दीजिए और हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय तक पहुंच बातचीत से शुरू होती है और लोगों की खास समस्याओं के हिसाब से समाधान दिए जाने चाहिए। इंदौर में आज न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों की शिकायतों और परेशानियों को उनकी अपनी भाषाओं में सुना जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन में देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said that India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said, this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
1: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
3: 7 people were killed and 11 were injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. The accident occurred in the Churaha Assembly constituency. The identities of the 7 people who lost their lives in the accident are yet to be ascertained. According to the State Emergency Operations Centre, the accident took place at around 7:15 a.m. today. Preliminary information suggests that the private bus was travelling from Bairagarh towards Chamba when it went off the road near Chalwanj Mor and fell onto another road below. The cause of the accident is being investigated. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi expressed grief over the loss of lives due to the mishap. In a social media post, Mr. Modi condoled the families who have lost their loved ones in the incident. The government has debunked a message circulating on social media that claims that India Post is offering gifts and rewards under dark seva gifts. The fact-check unit of the PIB clarified that India Post has no connection with any such dark seva gifts, offer, reward scheme or lucky draw. The unit advised citizens to not click on any suspicious links or web pages and never share personal information such as bank details, OTP or Aadhaar number. It also urged citizens to send any suspicious information related to the central government to @ PIB fact check or on WhatsApp or on a WhatsApp number 8799711259. India has called for urgent global action and strict accountability against those targeting educational infrastructure in Sudan. In Sudan, conflict has left more than 17 million children out of school in the last 3 years. Speaking at an ARIA formula meeting on safeguarding education in Sudan, investing in peace, recovery and stability in New York, Indian UN Councillor Eldos Matthew Panos reaffirmed India's commitment to protecting children's right to education in conflict zones. US President Donald Trump has defended plans to build a new ballroom and military complex on the White House grounds, describing a proposed rooftop drone port as an important military asset. Trump shared a graphic of the proposed installation on his Truth Social platform. The image shows military drones on a rooftop above the planned ballroom, with armed personnel and Washington Monument visible in the background. The India Meteorological Department

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हम आपसे जुड़ गए हैं लेकर मन भावन, और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं, जो हमारे पुराने श्रोता हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं अपने संदेशों के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868686853। जी हाँ, और आप ईमेल के जरिए भी हम तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है fmgoldair@delhi.gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला एक पैगाम से जो हमने लिया है दिल्ली से। ये पैगाम हमारे पास आया है नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली सिराज मिथुन और संजय ढींगिया जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बल्ली मारान से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने एक फरमाइश हमें भेजी है, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोरदा की। उससे पहले हम कुछ संदेश, कुछ पैगाम आप तक पहुंचा देते हैं। तो हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का ये संदेश आया हुआ, इन्होंने भी फरमाइश भेजी है। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन कहते हैं प्यार भरा आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं कि आज मेरी बेटी फरहीन का जन्मदिन है, एक गीत तो बनता है। ये है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। चलिए बिटिया को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से। फरहीन खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे और देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैसेज आया हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ये संदेश आया हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे पास संदेशों की झड़ी लगी हुई है। जी जी, एक के बाद एक। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का ये संदेश आया हुआ है, तो चलिए आप तक पहुंचाते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये नगमा, किशोर दा और लता जी की आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा संदेश हमारे पास आया। इससे पहले कि हम अपने सफर को शुरू करें, तो हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं मनभावन आकाशवाणी दिल्ली के साथ, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। चैनल है आपका अपना FM गोल्ड 100.1। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा संदेश आया। ये संदेश है दिनेश ठाकुर जी की जयंती के बारे में। ये संदेश इन्होंने हमें भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से। संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय चौहान। जी हाँ, एक अच्छे अभिनेता जो रंगमंच से जुड़े रहे और कई फिल्मों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। रजनीगंधा उनकी एक प्रमुख फिल्म थी, मेरे अपने भी एक अच्छी फिल्म थी, और कई टेलीविजन के धारावाहिकों में भी वो नजर आए और बहुत ही अच्छे मझे हुए कलाकारों में थे। तो आज उनकी जयंती है और उन्होंने कहा है कि वो उनकी फिल्म रजनीगंधा का नगमा सुनना चाहते हैं, तो जी हमने बिल्कुल ले लिया है। मुकेश की आवाज में नगमा आप सब सुनेंगे। अब इससे थोड़ी देर में थोड़े से संदेश हम आप लोगों के शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, शिव कॉलोनी रोहतक से जुड़े हुए, डुग्गू भाविका सिक्का भी हैं, और साथ ही हमारे पास और भी संदेश आ रहे हैं। उनमें होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल भी जुड़े हुए हैं। गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, राही, सरिता जी हैं, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश गावणकर और टुक टुक इनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही हमारे पास बालोद छत्तीसगढ़ से डॉडी लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और पोस्ट मास्टर अल कबीर। देखिए कितना सामाजिक ताना बाना है, ये भी जुड़े हुए इनके साथ कि एक पोस्ट मास्टर जो इन तक चिट्ठियां पहुंचाते हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत ही अच्छा। ये छोटी जगहों में, मतलब खासतौर पे जहां आबादी कम है वहां लोगों में प्रेम देखने को मिलता है। अनीता वर्मा जी जुड़ी हुई हैं द्वारका दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, जरूर हम कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे पास गंज डुंडवाड़ा से साहिन, फातिमा, शमसुल कमर, राही, अदनान खान, फैजान खान, अनु, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी भी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनोज कुमार, सोनित कुमार, उमेश कुमार, दिनेश कुमार ख्याला दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, रजनीगंधा फिल्म का ये नगमा हम आप तक पहुँचा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। शामिल करते हैं आपके पैगाम, बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अबान, अरजान और अब्बासी परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो हमें फरमाइश भेजी है हम जरूर कोशिश करेंगे पूरी करने की। और अब्दुल गफ्फार जुड़े हुए हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, सोहन जोशी और पायल जोशी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता और भूषण सोनी, और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जुड़े हुए हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया भी हमारे साथ। और गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार तमाम लोग जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाह जहां बेगम, मरियम, जैनब तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे पास लालगिरी गोस्वामी और हेमलता का रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान, श्री गंगानगर राजस्थान से पैगाम आया हुआ है। इनके साथ हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं जिनके संदेश शामिल हो गए हैं। मुझे लग रहा है वो संदेश न सुन के लगातार मेल भेजते जा रहे हैं। और ये हमारे पास मेल आया हुआ है अफरोज शेख का, ये कहते हैं कि हमारा मेल नहीं पहुंच रहा है कि हमारा, जरूर बताएं, हमारा नाम नहीं पढ़ा जाता है। जी नहीं, बिल्कुल आपका नाम भी पहुंच गया है और आप अफरोज शेख, पता नेमुआ सुपौल बिहार से संदेश आया हुआ हमारे पास। और इशाक मोहम्मद भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ से, इमरान मोहम्मद, इशरत परवीन और हसनैन रजा और गौसिया फातिमा भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया।

और निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और ये जुड़े हुए हैं धनौरी तेरी वाला उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला नगमा आप तक आ रहा है आप लोगों की फरमाइश पर, फिल्म चांदनी से सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं मनभावन और यहाँ गीत संगीत का सिलसिला जारी है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके संदेश और बहुत सारे वो नगमे जो आप सुनना चाहते हैं एफएम गोल्ड पर। जी हाँ, ये जुड़े हुए हैं हमसे कुमार सौरभ महतो और शिवांश रेखा महतो, चिन्मय महतो, कदमा जमशेदपुर से आप जुड़े हुए हैं और मुकेश शारदा ये कह रहे हैं कि ये हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जमशेदपुर से आप हमें सुन रहे हैं। साथ ही हमारे पास बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या और हेमलता डिंपल तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और साथ ही हमारे पास मास्टर

पर खिल्लू परवेज का ये संदेश आया हुआ है और ये भी इनके साथ बेगम इमराना नाज हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आप जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सुंदर इन्होंने संदेश भी भेजा है। आपकी फरमाइश भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी करें, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद, सुहेल हसन, अनम अशफ, रसीद वारसी किरवई नगर सिद्धपुर टाउन से जुड़े हुए हैं और मरहटा दरवाजा एटा से भी जुड़े हुए हैं। वहां से हैं जुबेर अली खान, सबीहा अंजुम खान, ये सिद्धपुर टाउन से हैं। और साथ ही हमारे पास जो गाना अभी हमने सुनाया उसी की फरमाइश हमारे पास आई हुई है, चांदनी फिल्म का ये नगमा था। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़, इन्होंने हमें नांदेड़ महाराष्ट्र से संदेश भेजा है। और साथ ही हमारे पास हमसे जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योतिष पटेल, शुभम, देवकिशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल, ये भी ये जुड़े हुए हैं मोटका माफी जिला खांडवा से। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता भी जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म संगम का, मुकेश जी की आवाज में आप सबके लिए, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ श्रोताओं, आप तक हम बहुत सारे गाने हमने पहुंचाए, बहुत सारा संगीत पहुंचा आप तक और आपकी बातें भी हमने की। और लेकिन एक जो बात हम करना चाह रहे हैं कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है और मौसम बहुत बारिश का है, खासतौर पर दिल्ली और आसपास तो बहुत बारिश हो ही रही है जो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर भारत में लगभग हर जगह हो रही है, तो ऐसे में अपना खूब खास ख्याल रखें, अच्छा ख्याल रखें और आसपास की चीज़ों को देखें, जरा खान पान में शुद्धता भी बरतें, क्योंकि ऐसे मौसम में थोड़ा सा पाचन भी कमज़ोर हो जाता है और फंगस भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा भोजन करें और ध्यान रखें कि पानी कहीं से भी आपको नुकसान न पहुंचाए और इस पानी का जितना लाभ मिल सकता है वो हमें मिले। बहुत सारे संदेश आपके अभी भी हमारे सामने हैं, जो अब चूंकि संगीत का समय तो बचा नहीं है लेकिन हम कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से भावना जुड़ी हुई है, कहती हैं कि यशोदा का नंदलाला सुना दीजिए। जी ये नगमा हम ज़रूर ये गीत आप तक पहुंचाएंगे लेकिन आज वक्त नहीं है। और हमारे पास एक संदेश आया हुआ है गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद अबान, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिलराम गेट कासगंज से, जी उत्तर प्रदेश में ये जगह है। और आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक पथिक सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और विष्णु गार्डन से जुड़े हुए हैं उमेश कुमार, मनीष कुमार, राकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और नांगलोई से जुड़े हुए हैं कुमार, राहुल, रितिका और जगदीश, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब हमारे चलने का वक्त हो गया है, आप खुश रहें और खुश रखें, अपने आसपास खुशियां बिखेरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ट इंडिया, क्रॉस 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सगलानी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी की यात्रा रोक दी गई। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय तक पहुंच बातचीत से शुरू होती है और लोगों की खास समस्याओं के हिसाब से समाधान दिए जाने चाहिए। इंदौर में आज न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों की शिकायतों और परेशानियों को उनकी अपनी भाषाओं में सुना जाना चाहिए। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं फिल्मी तराने। पहली फिल्म है अजीब दास्तां है, जी हाँ, और इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम आप तक पहुंचा रहे हैं नितिन मुकेश की आवाज़ में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी।

0: अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: लीजिए सुनिए अगला गाना। फिल्म है आपकी कसम, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

0: And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सहायक नर्सिंग अधीक्षक दो पद, बाल मनोचिकित्सक एक पद, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी और चिकित्सा अधिकारी यूनानी एक एक पद, तथा मेडिकल फिजिसिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद और मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी तथा ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए दो पद उपलब्ध हैं, जबकि मेडिकल फिजिसिस्ट रेडियोथेरेपी के लिए एक पद उपलब्ध है। आप विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। इसके अतिरिक्त यदि आप और विस्तार से जानकारी चाहें तो देख सकते हैं 8 अगस्त से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अभियंता और संपदा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ अधीक्षक तथा कनिष्ठ लाइब्रेरी सूचना सहायक। ऑनलाइन शुल्क भुगतान, पात्रता शर्तों और ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है iitmandi.ac.in। कोस्ट गार्ड मुख्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन स्टाफ अधिकारी, लॉजिस्टिक्स, अनुभाग अधिकारी, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, निजी सहायक तथा सहायक। सिविलियन स्टाफ अधिकारी की नियुक्ति गोपालपुर ओडिशा में की जानी है, जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी लॉजिस्टिक्स की तैनाती होगी कोच्चि, श्री विजयपुरम और पोरबंदर में। अनुभाग अधिकारी कोच्चि, कवरत्ती, एनरोथ, ओखा, वादिनार और फ्रेजरगंज में तैनात होंगे, जबकि मुख्य ड्राफ्ट्समैन तूतीकोरिन और रत्नागिरी में कार्यरत रहेंगे। निजी सहायक की नियुक्ति पोरबंदर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में होगी, जबकि सहायक पद के लिए नियुक्तियां होंगी चेन्नई, विशाखापत्तनम, कराईकल, मुंबई, बेपोर, मिनिकॉय, एनरोथ, विझिंजम, दमन, कारवार, श्री विजयपुरम, जखाऊ, पिपावाव और वादिनार में। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय कोस्ट गार्ड की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्रोफेसर औषधीय प्रबंधन, सहायक प्रोफेसर वित्त एवं लेखा, उपपंजीयक वित्त एवं लेखा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजे जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.indiancoastguard.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको नियम और शर्तों संबंधी समग्र जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी

0: कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम रेनू कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू डियर लिसनर्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स and much more, and all this over the next 30 minutes. But first let's begin with the news headlines. Mukesh
2: ji, bilkul. Pradhanmantri Narendra Modi ne kaha, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया।
3: Jharkhand government holds second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations.
2: Himachal Pradesh ke Chamba zile mein aaj savere ek bus durghatna mein 7 logon ki maut aur 11 anya ghayal.
3: IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today.
2: जम्मू से बालतल के रास्ते अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित।
3: एंड इन मेंस जैवलिन थ्रो, आशीष यादव विन सिल्वर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। And now, dear listeners, it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we are going to talk about the digital transformation of the Indian judiciary e-courts mission. And for all of you who are not aware, please do listen carefully. Mukesh, ये आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक हमने टॉपिक उठाया है जो सबकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है अगर वो सुने हमें तो. So India's judiciary, which serves over 1 billion people, has long relied on paper records and brick and mortar infrastructure. Many citizens incurred excessive travel and other expenses visiting courts and other establishments for their matters and documents. This archaic system made the delivery of justice slow, cumbersome and expensive for the people it served. The government launched the e-courts mission mode project in 2007 to address these challenges. This mission aims to systematically speed up proceedings by digitizing various court proceedings and documents. It is also making the judicial process more affordable, accessible and transparent for uninvolved, including lawyers, judges and clerks. Now, in its third phase, the mission has transformed the judicial system using technology.
2: बिल्कुल, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान पहले चरण में इस मिशन की नींव रखी गई। इसमें 14,000 से अधिक अदालतों को कंप्यूटराइज किया गया और प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक सेवाओं के लिए जरूरी बुनियादी नेटवर्क अवसंरचना तैयार की गई। वर्ष 2015 से 2023 के दौरान दूसरे चरण में नागरिकों के लिए कई सेवाएं जैसे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्र शुरू किए गए। इस चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को 5 गुना से अधिक बढ़ाया गया, जिससे न्याय कार्यवाही तक पहुंच, वर्चुअल पहुंच जो थी वो उसमें काफी सुधार हुआ। वर्ष 2023 से 2027 के दौरान ये परियोजना अब तीसरे चरण में है। इस चरण का लक्ष्य डिजिटल, कागज मुक्त और अधिक स्मार्ट अदालतों की ओर बढ़ना है। इसके लिए रिकॉर्ड्स का बड़े पैमाने पर डिजिटाइजेशन, वर्चुअल सुनवाई का अधिक उपयोग, न्यायिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसी नई प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है। वर्चुअल कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, केस ट्रैकर और पेंडिंग व निपटाए गए केस दिखाने वाले डैशबोर्ड जैसे डिजिटल टूल्स ने अदालती कार्यवाही को व्यवस्थित

0: और तेज बनाया है। इन सुधारों से सभी संबंधित लोगों को फायदा होगा।
1: वेरी ट्रू मुकेश, द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड और द एन जे डी जी विच वॉज लॉन्च्ड अंडर फेज टू इज एन ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड दैट ट्रैक्स कोर्ट ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड केस डिटेल्स इन रियल टाइम। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। द एन जे डी जी कंप्राइजेज 3 डेडिकेटेड डैशबोर्ड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट, High courts and district courts. Together, they provide insightful details on the functioning of courts across the country by tracking the number of pending and disposed cases in high courts and subordinate courts across the country. It also gives information about the distribution of cases by category and stage of proceedings, such as admission, hearing, judgment, and disposal. The NJDG aims to improve transparency and accountability in the system by making data on pending court cases public. It has also helped in judicial planning, monitoring and remote administration by the High Court judges, district judges and High Court registry.
0: और रेनू, इससे पहले क्या होता था कि नागरिकों को, वकीलों को कोर्ट के जो दस्तावेज हैं, जैसे शिकायतें, लिखित बयान, जवाब और दूसरी अर्जियां खुद जाकर जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब ई फाइलिंग प्रणाली की वजह से इसकी जरूरत नहीं रही है। अब दस्तावेज कहीं से भी ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए ये प्रणाली अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है और जिला अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में काम करता है।
1: वेरी ट्रू मुकेश, यू नो देयर आर दीज क्रोर्स ऑफ पेंडिंग केसेस एंड दीज क्रोर्स ऑफ ओल्डर कोर्ट रिकॉर्ड्स आर बीइंग डिजिटाइज्ड अंडर फेज 3 ऑफ द मिशन एंड दिस हेल्प्स प्रिजर्व वैल्युएबल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड मेक्स रिट्रीवल एंड रिसर्च फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। लिटिगेंट्स, लॉयर्स, विटनेसेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन नाउ पार्टिसिपेट in hearings remotely through video conferencing. This has eliminated the need for travel, enabling easier access to courts across cities and states and improving access to justice.
0: बिल्कुल, अब वकील जो है मुकदमे से जुड़े लोग, न्यायाधीश और दूसरे लोग ऐप, कई भाषाओं वाले ई कोर्ट्स, सर्विस पोर्टल, ईमेल और एसएमएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुकदमे का स्टेटस और अपडेट ट्रैक कर सकते हैं। इन सेवाओं से ट्रैकिंग और पारदर्शिता बेहतर हुई है, इससे अदालत जाने की जरूरत कम हुई है और न्यायिक सेवाएं प्राप्त करना आसान हो गया है। रोजाना 4 लाख से अधिक एसएमएस और 6 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। कई भाषाओं वाले ई कोर्ट सर्विस पोर्टल पर रोजाना लगभग 35 लाख हिट्स आते हैं।
1: वेरी वेरी ट्रू, द ई सेवा केंद्र एस्टैब्लिश्ड विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस सर्व एज सिटीजन फ्रेंडली असिस्टेंस सेंटर्स। इट इज वेयर पीपल कैन गेट गाइडेंस ऑन वेरियस लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस एंड दीज कियोस्क्स प्रोवाइड द फैसिलिटीज लाइक आंसरिंग क्वेरीज ऑन केस स्टेटस, नेक्स्ट हियरिंग डेट एंड रिलेटेड केस डिटेल्स, शेयर जजमेंट एंड कोर्ट ऑर्डर्स कॉपीज वाया ईमेल, व्हाट्सएप और अदर डिजिटल चैनल्स। And as on June 30, 2026, there are 49 e-seva kendras functional across all high courts and 2,535 e-seva kendras across district courts.
0: बिल्कुल, मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2027 तक उच्च न्यायालय में एआई और मशीन लर्निंग को लागू करना अगला कदम है। इस विकास कार्य के लिए कुल 7,210 करोड़ रुपए के बजट में से 53.57 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इन तकनीकों के इस्तेमाल से कानूनी अनुसंधान, मुकदमा प्रबंधन, ट्रांसक्रिप्शन अनुवाद और न्यायिक फैसलों में मदद जैसे कामों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
1: The e-courts mission has modernized and digitized India's judicial system. It has replaced tedious processes, in-person court visits and physical paperwork with something far easier, more trackable and more efficient. New AI tools are helping various stakeholders work more effectively. Through these interventions, anyone can access judicial services from anywhere. Justice delivery is now more transparent, faster and more affordable for the public. The e-courts mission mode project has transformed India's paper-based judiciary into a digitally enabled and trackable justice delivery system. Since 2014, both case filings and disposals have nearly tripled, with courts consistently disposing of more cases than are filed each year. Over 753 crore pages of court records have been digitized, while thousands of e-seva kendras are helping bridge the digital divide by expanding

0: पर आपकी फाइल सामने आती है।
1: आपको एक कियोस्क पे जाना है, आपको एक क्लिक करनी है और आपके पास सारी जानकारी आपके सामने होती है।
0: और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो रेनू, सबसे पहले चलते हैं त्रिपुरा।
1: जी चलिए।
0: और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक समावेशन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए विकास कार्यों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में राज्य की प्रगति की तारीफ की है। त्रिपुरा की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने महिला और बाल कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों तथा लाभार्थियों से बातचीत की। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
2: नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया राहतकर बिगन हर 3-day विजिट टू त्रिपुरा ऑन जुलाई 28 विद अ विजिट टू गोमती डिस्ट्रिक्ट वेयर शी वाज वेलकम्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। शी इंस्पेक्टेड द वन स्टॉप सेंटर एट तिपानिया एंड रिव्यूड द सपोर्ट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू वुमेन फेसिंग डिस्ट्रेस एंड वायलेंस। लेटर शी अटेंडेड द शी सर्व्स प्रोग्राम वेयर शी एनकरेज्ड यंग वुमेन टू एक्सप्लोर करियर अपॉर्चुनिटीज इन द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड द पुलिस। स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन and employment, she said economic independence is one of the strongest pillars of women's empowerment.
3: Shisha ji, hamari jo Gomati ki betiya hai unke liye humne kiya hua ek acha prayas hai.
2: At Udaipur's Rajarshi Kala Kshetra, the National Commission for Women chairperson participated in an awareness program on child marriage prevention and the Yashoda AI initiative. Addressing the gathering, she described child marriage as a major social challenge and said that expanding access to education for girls and children is the most effective way to eliminate the practice. She also highlighted the importance being given to women's education under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. On the final day of her visit, Vijaya Rahatkar addressed a press conference in Agartala. She said the government of India is working with the goal of eliminating child marriage across the country by 2030. She also highlighted the implementation of POSH Act to prevent sexual harassment at workplaces and spoke about joint initiatives with the border security force to curb human and child trafficking. She emphasized that ensuring women's safety and protecting their rights requires collective participation from society, institutions and the administration. According to her, awareness, education and equal opportunities will play a vital role in building a stronger and more inclusive India. The National Commission for Women Chairperson's visit highlighted the center's continued focus on strengthening women's safety, education and economic empowerment. Her interactions with officials, students and beneficiaries reaffirmed the importance of coordinated efforts to create a safer, more inclusive and empowered society for women in Tripura. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
0: और त्रिपुरा के बाद अब आप लोगों ले चलते हैं गोवा और जानते हैं कि पणजी में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस रोड रेस जो होनी है उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं।
1: एंड दिस इंडिपेंडेंस डे गोवा विल सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विद फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप। द डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इज इनवाइटिंग पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स टू लेस अप देयर रनिंग शूज एंड टेक पार्ट इन द एनुअल इंडिपेंडेंस डे रोड रेस इन पणजी। सो मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पोंडेंट।
4: The Directorate of Sports and Youth Affairs will organize the annual Independence Day road race on August 15th in Panji. The race will begin and conclude at Old Secretariat, covering different routes through landmarks including Kala Academy, Kampal and Goa Science Center. The event will feature 4 categories. Boys and girls aged 14 to 16 years will compete in a 3.5 km race. Participants between 16 and 19 years will run 5 km. Men and women aged 19 to 60 will compete over 8 km, while senior citizens about 60 years will participate in a 1 km race. School students with a sports background have also been encouraged to take part under the guidance of their physical education teachers. Online registration is open and the last day to submit entries is August 10. The Independence Day road race promises to combine patriotism, fitness and community participation, making it a fitting celebration of the nation's 80th Independence Day. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: और अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 4 और डॉपलर वेदर रडार लगाकर अपने मौसम की निगरानी और पहले से बेहतर देने वाली चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। तो मौसम विभाग ये नए रडार कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग और सोपोर, चिनाब घाटी में डोडा और पीर पंजाल इलाके में राजौरी में लगाएगा।

0: और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार अनुपम श्याम ओझा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। अनुपम श्याम ओझा मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे। अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है, लेकिन उन्हें असली सफलता 2009 में मिली जब टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था और ये टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे, तो क्यों ना इस किरदार का डायलॉग सुन लेते हैं।
1: हम कौनो तितली नहीं ना, जब मुट्ठी में दबाए लोगे तो रंग छोड़ देंगे। ठाकुर सज्जन सिंह है, सज्जन सिंह प्रयागराज के ठाकुर सज्जन सिंह।
0: थिएटर की शिक्षा लेने के बाद अनुपम श्याम श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम करने लगे और कुछ दिन वहां काम करने के बाद एक्टर बनने का सपना लिए वो माया नगरी मुंबई पहुंच गए। अनुपम श्याम ने सबसे पहले लिटिल बुद्धा नाम की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में काम करने का अवसर मिला। अनुपम श्याम को फिल्मों में अधिकतर बदमाशों का किरदार ही मिला। उन्होंने अपने करियर में दस्तक, 1084 की मां, दुश्मन, सत्या, दिल से, जख्म, संघर्ष, लगान, नायक, शक्ति, पाप, जिज्ञासा, राज, वेल्डन, अब्बा, वांटेड, कजरारे और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में काम किया। तो एक और डायलॉग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
2: जवान बेटा मर गया, बिलबिलाए रहा है नरसिम्हवा, हिलहिलाए रहा है अपनी हवेली में और इधर उधर जिसको देख रहा है मार दे रहा है। ए नरसिम्हवा, अरे रोमा उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, और किसी आनी बिल्ली तंबा नहीं नोचेगी तो का डांस करेगी।
3: And today we are going to talk about Bhishma Sahani Mukesh. He was a Hindi writer, playwright and actor, most famous for his novel and television screenplay Tamas, which means darkness, ignorance, a powerful and passionate account of the partition of India. And he was awarded the Padma Bhushan for literature in 1998 and the Sahitya Akademi Fellowship in 2002. And he was also the younger brother of noted Hindi film actor Balraj Sahni.
0: और उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों की सदैव हिमायती रहे। वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे और आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे चिर स्मरणीय रहे। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें उनके उपन्यास जैसा कि आपने बताया तमस जो थी 1986 में एक फिल्म का उस उपन्यास के आधार पर निर्माण हुआ था और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। और देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके साथ ही वे अध्यापन का भी कार करते रहे।
3: जी बिल्कुल। एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ शॉन मेंडेस, हु इज अ कैनेडियन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड मॉडल। अमंग हिज एक्लेड्स, मेंडेस हैज वन 13 सोकान अवार्ड्स, 10 एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स, 8 जूनो अवार्ड्स, 8 आई हार्ट रेडियो MMVAs, 2 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स एंड रिसीव्ड 2 ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशंस। सो हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू हार्ट ऑफ गोल्ड इन हिज ब्यूटिफुल वॉइस।

0: और भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी की आज जयंती है। तत्कालीन समय में जब नाचने गाने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और महिला कलाकारों को वेश्या मान लिया जाता था, ऐसे समय में सिद्धेश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूर मान और सम्मान अर्जित किया था। उन्हें निर्विवाद रूप से ठुमरी गायन की साम्राज्ञी मान लिया गया था। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।

0: की है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the centre of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफर पे आपसे फिर से मुखातिब हैं हम। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश, और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आप सभी का स्वागत। रिमझिम इस मौसम में आप बने रहें हमारे साथ, हम आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे नगमे उस दौर के जो काफ़ी करीब का दौर है हमारे, और उस दौर को काफ़ी पसंद भी किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80s और 90s की। इस दौर में एक फिल्म आई थी 1988 में, फिल्म थी दयावान। इस फिल्म में सितारे थे विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित, फिरोज खान, आदित्य पंचोली, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस फिल्म के निर्देशक थे फिरोज खान। और इस फिल्म में जो माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की केमिस्ट्री दिखाई गई बहुत ही गजब की थी। और चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा पंकज उधास और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में आप सबके लिए हम लेकर आए हैं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in।

जी हाँ, और ये जो गाते गुनगुनाते का सफर है आगे बढ़ रहा है, और इस सफर में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं अगली फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी, निर्देशक मझेवे विधु विनोद चोपड़ा। कुछ अलग हटके फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले यानी इसका जो पटकथा लिखी थी वो लिखी थी संजय लीला भंसाली और शिव कुमार सुब्रमण्यम ने। एक सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने, जो इस फिल्म के प्रदर्शित होते वक्त इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका संगीत सिर चढ़कर लोगों के ऊपर जादू कर गए। जी हाँ, और सितारे थे अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, डेनी, अनुपम खैर और चांदनी और प्राण। चलिए इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए, फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश। और जो अगला हमने गाना लिया है वो गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और आवाज़ है उदित नारायण और अलका याग्निक की। और ये फिल्म थी 1991 में आई लम्हे। ये जो फिल्म है इसमें अभिनय किया श्रीदेवी ने, अनिल कपूर, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, ये तमाम इसमें कलाकार थे। जी हाँ, यशराज फिल्म्स की ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, एक लीक से हटकर ये फिल्म थी। इस फिल्म को की कहानी भी बहुत अलग थी। इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी और डॉक्टर राही मासूम रजा ने, और फिल्म का जो संगीत था वो शिव हरी का था। शिव कुमार शर्मा और हरी प्रसाद चौरसिया की जोड़ी, बहुत ही अच्छा इस फिल्म का संगीत था। और इसी फिल्म का ये नगमा हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, आपको बेहद पसंद आए।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड पे मनभावन, क्षमा कीजिएगा गाते गुनगुनाते। और इस सफर में हम आपके साथ बहुत सारे कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जो आपको तरोताज़ा कर रहे होंगे और इस मौसम के अनुकूल भी हैं। मौसम भी बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो नगमे हैं बिल्कुल एक अपने आप में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं और एक ऐसा संगीत है जो आपको तरोताज़ा कर देता है। संगीत हम आप तक जो गीत पहुंचाने जा रहे हैं वो फिल्म है प्यासा सावन, और इस फिल्म में जो कलाकार थे उनमें जितेंद्र, रीना रॉय, मौसमी चटर्जी, और फिल्म का जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। एक अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी काफ़ी पसंद किया गया। लता जी और सुरेश वाडकर की आवाज़ में नगमा हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। पिछला जो नगमा हमने आप तक पहुँचाया था वो फिल्म थी लम्हे, जहाँ लता जी की आवाज़ थी और इला अरुण जो बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं राजस्थान से, उनकी आवाज़ उस गाने में थी। तो अगला नगमा भी लता जी और अब इस बार उनके साथ हैं सुरेश वाडकर, उनकी आवाज़ में आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ, मौसम बिल्कुल ऐसा ही है। मेघा छाए हैं और कभी भी बरस जाते हैं, और बरसते हैं तो बहुत सुकून देते हैं। जी हाँ, एक और बहुत ही प्यारा सा गाना हम लेकर आए हैं, फिल्म है नमक हलाल, और जब मेघ बरसते हैं तो आहा क्या बात है, मन पुलकित हो जाता है। और जब मन पुलकित होता है तो आदमी के मन में बहुत कुछ आता है, प्रेम की भावनाएं जागती हैं और काफ़ी सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, और यूं मानो तो धरती भी खिल उठती है, पेड़ पौधे प्रकृति सब उसका आनंद लेते हैं। बहुत ही शानदार ये नगमा है।

0: और तैयार किया बप्पी लाहिड़ी ने, और बहुत ही अच्छी फिल्म आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। इस फिल्म का ये गाना स्वर है किशोर कुमार और आशा भोसले का।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

जी हाँ, नमक हलाल के इस बहुत ही प्यारे से नगमे के बाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं गाना फिल्म मोहरा का। ये फिल्म आई थी 1994 में, 1 जुलाई को ये प्रदर्शित हुई थी। त्रिमूर्ति फिल्म्स इस फिल्म के वितरक थे और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। राजीव राय इस फिल्म के निर्देशक थे, गुलशन राय निर्माता थे। फिल्म में अभिनय किया था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल और फिल्म का जो संगीत था वो विजू शाह का था। इसी फिल्म का एक गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक का। एक अच्छा गाना और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। हम आपको बता दें, एक लंबी फिल्म थी, लगभग 3 घंटे की ये फिल्म थी और लोगों ने काफ़ी इस फिल्म को पसंद किया। इस फिल्म के बहुत सारे गाने बहुत हिट हुए। आज हम जो गाना आप तक पहुँचा रहे हैं वो आज के इस मौसम को देखते हुए बिल्कुल फिट है।

और चलते चलते अब आज का ये सफर अब समाप्त होने को है, और चलते चलते हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं फिल्म सर का वो गाना जो आपको बहुत पसंद आएगा। स्वर है कुमार सानू का, और इस फिल्म को बनाया था महेश भट्ट ने, और कलाकार थे नसीरुद्दीन शाह, अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर। फिल्म का संगीत है अन्नू मलिक का। और चलते चलते एक ही संदेश, खुश रहें और खुशियां बांटें, और बने रहें एफएम गोल्ड के साथ। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rongwan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal today said that seafarers remain at the heart of India's maritime growth story and reaffirmed the government's commitment to ensuring that every seafarer is safe, respected and supported. Speaking at a national stakeholder interaction on seafarer security, safety and welfare in Mumbai, Mr. Sonowal said, India has emerged as one of the world's leading seafaring nations. On the occasion, eSamudra, a comprehensive digital maritime governance platform, was also inaugurated. The platform aims to provide seamless, transparent and citizen-centric services to seafarers, shipping companies, ports, service providers and other maritime stakeholders. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Nav Kranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. He highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes. The Home Minister also launched a security operations centre which will provide round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. Chief Justice of India Surya Kant has stressed that justice must travel to the citizen rather than expecting citizens to travel to the justice system. He was addressing the inaugural session of the West Zone Regional Conference of the National Legal Services Authority in Indore today. The CJI said meaningful access to justice requires legal institutions to reach people who are unable to approach them. He noted that the three pillars of the conference, dialogue, dignity and inclusion, gave practical meaning to the constitutional promise of equal justice. The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal today under India's BRICS chairship. The meeting adopted the Bhopal Declaration aimed at strengthening cultural cooperation among BRICS member and partner countries. Representatives from 14 countries, including 10 BRICS members and 4 partner countries, took part in the meeting. The delegates discussed ways to promote cultural and creative industries. They also focused on creating more opportunities for artists. The meeting discussed using digital platforms to help artists reach wider markets. Protecting and restoring cultural heritage was another key focus. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. According to the IMD, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected to prevail over Lakshadweep, North Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD has also predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning in various parts of the country over the next 2 to 3 days. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
4: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है, जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3: श्रोताओं, गोबरधन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर CBG संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गांवों में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। CBG उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग

0: हो। यानी गोवर्धन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोवर्धन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: श्रोताओं, गोवर्धन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में CBG को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोवर्धन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
2: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर CBG संयंत्रों तक पहुंचाया जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। CBG संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोवर्धन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
0: श्रोताओं, गोवर्धन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत CBG उत्पादकों को कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोवर्धन योजना के तहत देश में CBG क्षेत्र में हो रहे प्रगति के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोवर्धन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 CBG और बायो CNG संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। श्रोताओं, गोवर्धन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोवर्धन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।
3: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, ड्रोन्स इत्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसित भारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा IIT छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रियहितं स्थापयितुं प्रार्थितः। झारखंड सर्वकारः JPSC तथा JSSC परीक्षासु अभिकथितानां अनियमिततानां विषये छात्रैः सह द्वितीय चरणस्य वार्तालापम् अकरोत्। हिमाचल प्रदेशस्य चंबा मण्डले अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः व्रणिताः च अभवन्। आईएमडी इत्यनेन अद्य राजस्थानस्य ओडिशा राज्यस्य च उपरि अत्यधिक वृष्टेः नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रतिकूल ऋतोः कारणात् जम्मूतः बाल्टाल नगरं प्रति अमरनाथ यात्रा भी स्थगिता। अपि च पुरुषाणां जैवलिन थ्रो क्रीडायां आशीष यादवः संयुक्त राज्य अमेरिका देशे विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप क्रीडायां रजत पदकं प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं सन्ततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। श्रीमोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकं आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसित भारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकण्डक्टर, अन्तरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणाम् उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन् अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति।
4: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
3: अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत्कर्तुं न शक्नुयादिति। परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्सतः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति।
4: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
3: श्री मोदिना सामाजिक संचार माध्यम युगे ये विक्षेपाः उत्पद्यन्ते तेषां विषये अपि प्रोक्तम्। सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य, कार्यस्य, कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते। अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षाव्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रिता, अनुसन्धान आधारिता, भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य संगणक सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंडे जेपीएससी जेएसएससी इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रतिगच्छति। अद्य राज्य प्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविध समूहानां च मध्ये उच्चस्तरीय वार्तायां द्वितीय चक्रं सम्पन्नम्। अद्य रांची नगरस्य राज्यातिथि गृहे

0: श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद निशेत और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: आइए श्रोताओं, डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर।
2: The benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data, and UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक का उछाल आया। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क यूपीआई लेन देन होगा।

0: now 31st July was the date. So I would suggest for this year, which is 25-26, you revise your return, and in your schedule FA, you fill up the assets which you have overseas. And I'm assuming while answering, Vishal, that you are a resident at this point of time. If you are a non-resident, which is you've stayed in the outside the country for more than 180 days, you don't need to declare at all, because for foreign citizens, this is not required. If you are an Indian resident, resident means you've stayed in the country, then you need to declare. So based on what I said, you'll have to take a call. As for the historical part, the historical default, let me not scare you by giving penalties, because you've spoken about the penalties earlier. So I don't want to create a fear in you. But then, yes, you can revise this return, fill up, and just let it be a fresh beginning. You know, in Hindi, we say, jab jaage tab savera. So we cannot, because you cannot revise earlier returns. There is only one provision where you can go to the PCIT, bring to his notice that I want to file. But that is mostly done when people have missed their refunds. In your case, there's no refund. So let us just start now. If there is a notice which you get, call us again. We'll try and suggest you an alternate as to how to sort it out earlier. But at least remove the default going forward, Vishal.
1: दिल्ली से हमारे साथ प्रेम जी जुड़ रहे हैं. प्रेम जी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: जी, सारे टीम को मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम.
0: प्रणाम जी, गुरु जी, अच्छा, चलिए प्रणाम
2: जी. सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी सीक्रेट लोगों से. सर, ये जो हम लोग के जहाजे में जो कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं, तो पहले सर ये युद्ध जोन में आता था, जिसको हम लोग रिस्क जोन बोलते थे, हाई रिस्क जोन बोलते थे, कहीं कहीं सोमालिया समथिंग लाइक. लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है, और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि साहब हम इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे, इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे. तो सर इसका क्या समाधान है? सर क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है? जो सी फेरे जा रहे हैं, और अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर भेज रहे हैं यहाँ से, कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज, जून वाइज, या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश डालने सर इस
0: पर? देखिये प्रेम जी, जी आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है. ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं, या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं. ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व्ड हैं, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है. तो मुझे लगता है इसमें प्रेम जी, जी जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं, और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है. आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है. तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है. आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं. तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है. मुझसे सवाल प्राची और निश्चित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए. मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी, जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सकें तो बचें, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं. आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पर उस रूट पे ना जाएं, पर अब मजबूरी है, अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए. वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे. बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए. आपकी सलाह हमने नोट कर ली है, और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा.
1: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं. हम अमित की कॉल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: धन्यवाद सर. जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं, एफएमसीजी सेक्टर के लिए दो चार सेक्टर आप बताएं, तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी, पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है, और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है, उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है क्या?
0: जितेंद्र जी, एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. तो आपने जो जिक्र किया, कुछ कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं. अच्छा, कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू, तेल, साबुन.

0: तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले, और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अब मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ एक मिले जुले थे, बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी, जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा, और वो खुलेगा नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी
1: आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से। अमित हैं दिल्ली से। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सभी को।
1: नमस्कार
2: सर। सर सर प्रश्न ये है मेरा सर।
0: जी
2: हाँ सर, अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो बात चल रही है हॉर्मुज ओपन करने के लिए,
0: जी,
2: तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रहेगी? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिसपे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया, तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर कि 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
0: अमित आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मुज पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ डॉलर क्वेश्चन। ये तो हर किसी के मन में, और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रा या कोई भी एक्सपर्ट इस पर टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे खुलेगा कि नहीं, देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपके दूसरी बात पूछी, इसको हम बाईपार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हां, 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा, और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है। जी
3: यस शरद जी, एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, द यूएस सेनेट हैज वोटेड टू अप्रूव अ बिल टू सैंक्शन रशिया एंड की बायर्स ऑफ इट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज चाइना एंड अदर कंट्रीज, क्लेमिंग दैट सच ट्रेड हेल्प्स फ्यूल द यूक्रेन वॉर। द बिल renamed as Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top 5 importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharaji, would like to know, you know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
0: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on. So in all, 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports,
3: right,
0: supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay. But this 100% would really put us in problem. As I said, there are 5 countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there, I hope it doesn't happen. Because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated,

0: This will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this is this bill is passed. But it's definitely, definitely a matter of concern for Indian exporters.
1: Right.
2: श्रोताओं भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे. हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं. मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई. आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1% जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया. इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई. सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 494,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.21 रुपए पर बंद हुआ. इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल. विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: मार्केट में नमस्कार जी. जैसे मैंने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, मगर डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है, क्या कारण है और क्या कहते हैं जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
0: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है. उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है. भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए. विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा. बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख देते. बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं. तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए. आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा. दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, आपका टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है. क्योंकि ये तो सबको, सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा. तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है और ये हम सभी यहां जो बैठे हैं हम सबके दिमाग में सवाल है. काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए.
2: बिल्कुल. भिलाई से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मथुरा टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार.
0: नमस्कार
4: सर जी. इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब आता, मतलब 4,00,000 से कम है
0: जी,
4: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो ना करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
0: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है, और ये देखिए कहीं इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा? क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा? और मैं 2-4 चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है. मान लीजिए आपने 2,00,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे, 10,00,000 सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2,00,000 से ज्यादा बिजली का बिल, 1,00,000 से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई हैं, तो ये भी देखनी पड़ती हैं. पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए. मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही है और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है. पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए.
2: बीइंग अ सिविलियन, ये हमारी जिम्मेदारी भी है.
0: नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4,00,000 से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल. गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे

0: महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हेलो हेलो
2: जी।
1: हाँ, मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से।
2: जी रामकृष्ण जी।
1: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से ही है।
2: जी
1: हाँ, 10-5 हजार वैसे इनकम हो जाती है टोटल,
2: जी।
1: तो 3 लाख मेरी है, 3-20, तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी है नहीं है?
2: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं। हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी, अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी, फिर आपको फाइल करनी जरूरी है। वरना देखिए, मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं। उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है, और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर अगर इनकम टीडीएस नहीं कटाए तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
3: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
4: नमस्ते मार्केट मदर सिंह। नमस्ते।
3: नमस्कार
4: जी।
2: नमस्कार
4: सर। ये जो वी आर इंपोर्टिंग अबाउट 55% रिसेंट रिपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड ऑल्सो इट इज वेल नोन दैट अ लॉट ऑफ रिफाइनरीज हैव बीन डिवास्टेटेड इन रशिया बाय यूक्रेन। वी आर ऑल्सो री एक्सपोर्टिंग डीजल एंड पेट्रोल टू बैक। सो वॉट इज द रिफाइनिंग मार्जिन एंड हु आर द बेनिफिशरीज कंपनीज? Will there those shares be benefited if will as investor? ठीक है, वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, है पर नहीं है एक तरह से। हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं? क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है या आएगा, या फिर ये जो ट्रम्प की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी? ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को? तो क्या उसके शेयर में फायदा है या नहीं है? सरकार ने तो शायद से नहीं किया होगा।
2: शंकर जी, देखिए देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज शंकर, आई थिंक योर क्वेश्चन एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ डबल एज सॉर्ट। वेयर इज ऑन वन साइड दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, अंडर रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर्स वेन द क्रूड ऑयल प्राइस इज हाई, द कॉस्ट इज हाई, एंड यू आर नॉट चार्जिंग एज मच, यू नो देयर इज अंडर रिकवरी ऑन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। ऑन द अदर साइड, येस यू आर राइट, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। सो you know it's a double edged sword, so refining margin varies, but your question is private companies, yes, like for example the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries, and that can also refine the western Texas intermediate oil, you know, which is the harder oil, it's not the sweet
3: the
2: oil,
3: sweet oil, yeah.
2: And that is very tough to refine. So we are, yes, we are one of the finest refiners in the world, and Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question. Whether to invest or not, I would advise that for some time till the matter is settled, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
3: Right. And moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,700. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
2: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, over the throughout the war. And I think this data will this data is a very interesting data, because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now, so which, or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets

0: see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
1: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
2: Namaskar.
1: Namaskar.
2: Coffee to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
0: जी,
2: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए
0: जी,
2: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके। अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है, जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने एमबीए मतलब एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है, डोंट यू थिंक सो?
0: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है। बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल, मैं टिक मारता हूं और आपके लिए कॉपी टू ऑल, आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है। टैरिफ आखिर लगता किस पे? खुद पे ही तो लगता है, इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है। आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी।
3: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा। एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है। इसने ये भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं। पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा। ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे, उनको देना पड़ेगा जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया है। हाँ। लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी,
0: कार्यक्रम
3: में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने।
1: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 0.5%, द वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद strong gains buoyed by macro economic data, and the UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies the apex digital payments body PCI. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
6: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृहमंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
7: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
9: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
8: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जिसमें लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश के लिए, खास करके विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने का आह्वान किया और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका।
3: जी धन्यवाद।
2: सुरेश जी, जैसा कि हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं का जैसा आह्वान किया है आज, खास करके क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की उन्होंने और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा जाना जाता है और उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक सार्वभौमिक रूप से युवाओं का आह्वान किया है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
3: जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो याद आ गया, हम लोगों ने सुना है कि किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी, उनका एक अभिभाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एक ऐसा अभिभाषण था जहां प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है और साथ में जो है यह भी बताया कि आपको भी अपने देश को जो है केंद्र में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं, युवाओं को और महिलाओं को उन्होंने हमेशा केंद्र में रखकर ही काम किया है। और चाहे वो उनकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंडअप इंडिया से लेकर, इतनी योजनाएं मुद्रा योजना से लेकर, किस तरीके से देश के युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, उच्च शिक्षा में जितने IITs खोले गए, नए IIMs खोले गए, नए नए संस्थाएं खोली गई, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हमेशा जो है युवा पीढ़ी उनके जो है सबसे केंद्र बिंदु रहा है उनके सभी नीति निर्धारण में। और आज भी जब IIT में 3000 से ऊपर जब विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया और उनको जो IIT से जो निकले, यानी कि जो देश के बहुत ही हमारे एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें देश के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आज अपनी मन की बात जो है उन विद्यार्थियों के साथ साझा किया जो देश के भविष्य हैं, जिनसे बहुत उम्मीद भी है और जिनको जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी एहसास दिलाया और सरकार उनके लिए क्या कर रही है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, इसके बारे में भी उनको सूचित कराया। तो एक तरह से इस IIT ग्रेजुएशन के बहाने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हर युवक को स्पर्श करने का प्रयास किया और बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था उनका, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी।
2: सुरेश जी, तो उभरते हुए शोध के अवसर जो हैं, वो जो IIT जैसे संस्थान और भी जो अन्य ऐसे संस्थान हैं देश में, वो काफी अवसर ऐसा प्रदान करते हैं और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है।
2: सुरेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने उभरते हुए जो शोध के अवसर हैं उस पर उन्होंने काफी बल दिया है और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान जैसे संस्थाओं के विद्यार्थियों का उन्होंने जो आह्वान किया कि अगले आने वाले 2 से 3 दशक हैं, ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर और किस तरह से वो इसे एक दिशा और दशा देते हैं उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा देश कैसे विकसित बनेगा 2047 में। कैसे देखते हैं इसे आप?
3: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी, उन्होंने शोध को जो है बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों के विश्वविद्यालय अगर आगे हैं तो उसका एक बड़ा कारण उसका है कि उनका शोध पर जो जोर देना है। इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी तब उसमें जो है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है कल्पना की थी, और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये जो युवा, जो भारतीय युवा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शोध अनुसंधान। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की बात कही। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो भारत सरकार का है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का जो शोध का जो इकोसिस्टम है, जो उस माहौल को जो है, और उसमें जो है ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हमारे युवा जुड़े, उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व में अगर हमें अपना स्थान बनाना है, हमें अपने पेटेंट्स लाने हैं, हमारे अपने शोध के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय हमारा जो है उपलब्धियां अगर हमको हासिल करना है, आईपीस लेने हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा जो है शोध पर जो है जोर दें। और आज का उनका आह्वान बिल्कुल मैं समझता हूं कि समय के अनुकूल है और हमारे युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
2: जी सुरेश जी, ऐसे कई विकासशील ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऐसे जो उभरते हुए जो

0: रहे हैं, उस पर उन्होंने युवाओं का खास आह्वान किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में खास क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
1: आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है।
0: जी सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता की भी बात की, सेल्फ रिलायंस इन न्यू सेक्टर्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात थी, ड्रोन की बात है, स्पेस की बात है, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे युवा जो हैं काफी उनकी भागीदारी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसे?
2: देखिए, जो प्रौद्योगिकी का जो क्रांतिकारी प्रगति आज हो रहा है और उसमें युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही, ड्रोन्स की बात कही, सेमीकंडक्टर्स की बात कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, डेटा सेंटर्स की बात कही, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आज ईवी व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उसकी बात कही, एनर्जी स्टोरेज की बात कही। और उन्होंने कहा कि आज हमारे पुराने, हम देखते हैं कि कई जगह जो है पुरानी नौकरियां, पुराने जो शैली की थी वो आज समाप्त हो रही है और नई नई चीजें उभर रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पहले पहले सवाल खड़े करते थे कि क्या भारत कभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, और उन्होंने ये सूचना भी दी कि हमारे पहला सेमीकंडक्टर यूनिट में जो है हमने उत्पादन का कार्य शुरू कर लिया है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके हाथों से सब कुछ बनेगा, चिप से लेकर शिप्स तक। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हर तरह के विधाओं में युवाओं की जो हमारी प्रतिभा है उसको उजागर करने की बात कही और उनको नए चुनौतियों के बारे में बोला, नए अवसर के बारे में बताया और कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रूप से आपको प्रतिभागिता आपको करनी है, उसमें भाग लेना है।
0: जी सुरेश जी, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज इन क्षेत्रों के अलावा सेमीकंडक्टर की बात आपने भी की। अभी सेमीकंडक्टर एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि अभी तक कुछ वक्त पहले तक हम विदेशों पे निर्भर करते थे, विदेश के कुछ ऐसे देश हैं जहां से वो हम इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर, और आज के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
0: सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन किया, जो कि एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक एडवांस्ड, जिसे कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना, और खास करके आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस जो है वहां पर एआई और डेटा साइंस को बूस्ट देने के लिए, उसके रिसर्च को, शोध को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप कैसे देखते हैं इसे?
2: बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था जब हमने पहली बार जब परम बनाया।
0: जी,
2: परम जो सुपर कंप्यूटर था वो भारत ने बनाया और पूरे विश्व को दिखा दिया था कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे कोई सानी नहीं है। और आज एक और कदम आगे बढ़ा के उसके बाद बहुत प्रौद्योगिकी में बदलाव आया और एआई बड़े पैमाने पर आया। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले जो है भारत मंडपम में दिल्ली में जो है हमने एआई का समिट का भी आयोजन किया था, जहां विश्व के जो एआई के नेतृत्व है वो वहां जो है उनकी उपस्थिति हमने देखा। और उसी एआई को आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम इसको किस तरीके से एआई के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर, सॉफ्टवेयर में तो भारत ही है आज, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर हो या साइबराबाद हो, आप देखेंगे कि हमारा विश्व में एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारतीयों ने खड़े किए हैं और भारतीयों का नेतृत्व है, भारतीय वहां कार्यरत है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम किस तरीके से जो है न सिर्फ भारत की तरक्की के लिए, पूरे मानवता के लिए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और उसमें मात्र मुनाफे को देखकर नहीं, विश्व कल्याण को केंद्र में रखकर हम एआई का किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो है इससे एआई को इस्तेमाल करते हुए ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने जो है सोनीपत कैंपस में आईआईटी दिल्ली के इसका उद्घाटन

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं निश्चित ही समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एआई के क्षेत्र में भी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी।
1: जी, सुपर कंप्यूटिंग की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़कर के भी अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर भी हम जा रहे हैं, और विश्व
0: जी
1: कल्याण के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया, जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की, कि युवाओं
0: जी
1: को खास करके जो ऐसे युवा जो आईआईटी जैसे संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: उन्हें
0: जी
1: नेशनल इंटरेस्ट केंद्र बिंदु में रखना चाहिए, ताकि आने वाले 30 से 35 से 40 वर्षों में भारत
0: जी
1: एक सुपर पावर के रूप में एक उभर करके ऊपर आए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब हम 15 अगस्त भी जल्दी ही मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देखिए हमारे हमने गुलामी का दौर भी हमने देखा है, और हमारा एक ही लक्ष्य उस वक्त होता था कि हमारा देश स्वाधीन हो, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस वक्त के युवाओं ने, और उन्हीं के कुर्बानियों के वजह से, बलिदानों के वजह से हम जो है आज एक स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगले 25-30 वर्ष में जो भी करेंगे वो विकसित भारत। देखिए, याद रखिए कि हमारा 2047 का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं देश के लिए इस विकसित भारत बनने की दिशा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ये विकसित भारत के जो मजबूत जो बुनियाद है उससे पता चलता है, और ये जो मजबूत बुनियाद विकसित भारत का है ये आपको बनाना है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों में आपने रखा है कि ये जो विकसित भारत बनेगा उसका बुनियाद जो है हमारे आज के युवा तैयार करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व तो बोध प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको दिया है।
1: जी, सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, सावन की जो बरखा आई है ना, तो मौसम ने भी अलग ही अंगड़ाई ली है और ये अंगड़ाई लेकर कह रही है, पुकार रही है आप सभी को अपने पास और कह रही है कि ये वक्त है सांझ ढले का। और चलिए चले आइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड के छाँव तले। जी हाँ, आगाज कर रहे हैं हम सांझ ढले का आपके लिए आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 7:26 और 20 सेकेंड। आज है आपके साथ आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो स्वीकार कीजिए अपने साथी अपने हम सफर का प्यार भरा नमस्कार और आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे हम शामिल कर रहे हैं फरार फिल्म से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: तो जनाब, मौसम तो बहुत सारी अंगड़ाइयाँ लेकर आता है, रुख भी बदलता है, पर हमें क्या करना है, हमें तो मौसम को हर तरह से एंजॉय करना है एहतियात बरत कर। चाहे हम यातायात चला रहे हों, यातायात में हों, चाहे हम घर पर हों, मौसम का ख्याल हमें रखना ही होगा हर हाल में, अगर हमें खुश रहना है तो। जी हाँ, तभी तो आप लुत्फ ले सकते हैं, हर मौसम का आनंद उठा सकते हैं जब आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहले इसको आप लेकर चलिए। और लीजिए, सुनते हैं अभी एक और खूबसूरत सा गीत, क्योंकि इस बारिश के मौसम में हवा भी कभी कभी बहुत तेज चलती है, तो अगर आप छतरी लेकर जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से जनाब।
1: अरे बारिश।

0: और इसी के साथ सांझ ढले से विदा लेती है रूपा। उम्मीद है आपको सांझ ढले में हमारे साथ रहना पसंद आया होगा, गीत पसंद आए होंगे और अगली सभा फिर से शुरू होगी कार्यक्रम की। आप सुनेंगे कुछ ही देर में समाचार। आज की
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
3: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने

0: चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत आधार का काम करेगी।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्य क्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ करेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विधेयक में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इसमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देना दिल्ली नगर निगम को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा। इसलिए जरूरत है जिस रेशो में पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी रेशो में फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। ये एक मानवीय सोच इस नगर निगम की दिखाता है कि साधारण बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चों के लिए भी सरकार काम कर रही है।
1: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने इस अवसर पर कहा कि आज परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लोग शामिल हैं। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: दिल्ली नगर निगम के हेल्थ सेंटर्स, हमारे स्कूल्स, सुरक्षित माहौल, एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल मॉडल और ये जो पब्लिक स्कूल है उनके समकक्ष आकर खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें नई योजनाएं लाकर नई बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर दिलशाद गार्डन के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली और सभी के मंगलमय, सुरक्षित और सफल कांवड़ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त व कांवड़ सेवा शिविर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की ओर से कांवड़ समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजनीय और सम्मानीय है तथा इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही है।
2: जो है समय शिवमय हुई है और सैकड़ों कांवड़ कैंप लगे हैं, हजारों कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली राज्य पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कांवड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है।
1: दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा समितियों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली, चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी मुश्किलों को समझा जाएगा और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया। श्री सूद ने प्रयोगशाला के कामकाज, वैज्ञानिक आधारभूत संरचना, फॉरेंसिक जांच सुविधाओं और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और अधिक दक्षता के जरिए जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। इस अवसर पर श्री नवीन ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने और युवाओं को नशे से दूर रखने हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनाने का ये संकल्प मानवता की सच्ची सेवा का संदेश देता है।
3: कई बार थैलेसीमिया के कैंप में जाने का मौका मिला। मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था कि आखिर उनका दोष क्या है, पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनसे उस दोष को उसके जीवन में डाल दिया। और जब रक्त की बात आती है और थैलेसीमिया के बच्चों को जो सहयोग रक्त दान के रूप में मिलता है, निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड्स की पड़ताल के जरिए पुलिस की टीमों ने 7 अफ्रीकी नागरिकों की पहचान कर उनका पता लगाया है। इनमें 5 नाइजीरियाई के और 2 घाना के नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को देश की स्वतंत्रता में किए गए लोगों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में बताने की अपील भी की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें दुर्लभ

0: दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। कल बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के एक संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु की एक टीम ये प्रस्तुति देगी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु को आज अमृतसर के अजनाला में स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग में SGPC ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि अजनाला का यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थल है। यहां वर्ष 1922 में सरदार तेजा सिंह समुद्री के नेतृत्व में गुरु का बाग मोर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये संघर्ष अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार और पुरस्कार दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय डाक का किसी भी डाक सेवा उपहार ऑफर पुरस्कार योजना या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगह पर हल्की से तेज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी

संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में

गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार धर्मेंद्र।
0: तो स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात और शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
1: यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया और नाखोन पाथुम में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते।
0: तो सबसे पहले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान पर। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। आशीष ने तीसरे दौर में 74.09 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: जब हौसला बुलंद हो तो हवा का रुख भी मोड़ा जा सकता है और यही साबित किया भारत के जेवलिन थ्रो की नई उम्मीद आशीष यादव ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में दबाव चरम पर था, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 19 वर्ष के जांबाज आशीष ने ऐसा आसमानी थ्रो किया कि सभी देखते रह गए। उनके 74.09 मीटर के थ्रो ने भारत की झोली में इस साल का पहला मेडल डाल दिया।
3: Here's Yadav.
4: Into the javelin then, Yadav in sixth at the moment. He's capable of more than sixth, and that has leapfrogged him up to second. Much, much more like it. 74.09, and he'll be feeling much better about that one.
2: ये सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं, एक बड़ी विरासत की गूंज है। इसी प्रतियोगिता में 2016 में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के ठीक 10 साल बाद आशीष यादव अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम पर खड़े होने वाले दूसरे भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक नहीं टूटा है। खुद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट कर आशीष को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते और जीतते देखना हमेशा एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक जेवलिन थ्रोअर के तौर पर यह मेरे लिए थोड़ा और खास है। अंडर 20 में आपके रजत पदक पर मुझे बहुत गर्व है आशीष। आशीष का रजत पदक जेवलिन की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। जेवलिन देश में सबसे तेजी से उभरता हुआ खेल है। नीरज चोपड़ा के अलावा भी कई युवा थ्रोअर इस खेल में आगे आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश में जेवलिन के प्रति नई जान फूंकी थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश और भारतीय सेना के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर धर्मेंद्र, इसी प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के मोहम्मद अशफाक 46.20 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डेलॉन ने 44.47 सेकंड के साथ स्वर्ण और किन्सी विल्सन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की हाई जंप में पूजा ने 1.79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली है। उधर महिलाओं की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पूनम अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में 8वें और कुल 13वें स्थान के साथ फाइनल में जगह नहीं बना सकी।
0: जी, और अब ट्रैक एंड फील्ड से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने अपने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
3: भारत की दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा के भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा। अश्मिता के लिए यह मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांटे के मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। अश्मिता ने कल जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हीना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उधर पुरुष डबल्स में पृथ्वी के रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के सामने पराजित हो गई। मलेशिया के मैन वेई चोंग और सो वुई यिक ने 21-7, 21-8 से बेहद आसान जीत हासिल की। कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइस फंड 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है। यह टूर्नामेंट 2007 में शुरू हुआ था और 2010 तक इसे इंटरनेशनल चैलेंज लेवल टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में इसे BWF ग्रांड प्री गोल्ड इवेंट में बदल दिया गया। साल 2017 में ग्रांड प्री गोल्ड इवेंट बंद होने के बाद कोरिया मास्टर्स BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बन गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: धर्मेंद्र, अभी चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। दक्षिण कोरिया 18 और 19 सितंबर को भारत के खिलाफ डेविस कप टेनिस के दूसरे दौर के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत इस समय डेविस कप रैंकिंग में 19वें और कोरिया 16वें स्थान पर है। कोरिया का भारत के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 6-5 का है। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला एक दशक पहले हुआ था, जब भारत ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे दौर में विजय रहने वाली टीम नवंबर में होने वाले अंतिम 8 मुकाबले में जगह बनाएगी। कोरिया 2022 और 2023 में 16 टीमों के डेविस कप फाइनल में पहुंच चुका है।
0: और प्रशांत, टेनिस की ही बात को और आगे बढ़ाते हैं। मॉन्ट्रियल में कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लेला फर्नांडीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में रूस की मीरा आंद्रीवा को 6-1, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 23वीं रैंकिंग वाली फर्नांडीज अब राउंड ऑफ 16 में पूर्व यूएस ओपन विजेता और जापान की खिलाड़ी नौमी ओसाका से भिड़ेंगी। ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मर्टिस को 6-1, 6-4 से हराया। इसके साथ ही फर्नांडीज ने एक साल से भी ज्यादा समय में टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज की।
1: धर्मेंद्र, चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम की पहली पारी से सिर्फ 6 रन पीछे हैं। सुनते हैं जया भारती की रिपोर्ट।
5: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन पर घोषित की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में भारत को पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा, यशस्वी खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान केएल राहुल के साथ 2 विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। केएल राहुल 1 छक्का और 5 चौकों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली और शानदार शतक लगाया। पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।
6: शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, दैट्स द 100। व्हाट अ नॉक फ्रॉम देवदत्त पडिक्कल, बैटेड ब्रिलियंटली टुडे कमिंग इनटू द टेस्ट मैच प्रैक्टिस गेम। यस, डिलीवर्ड परफेक्टली। Outstanding. It's about temperament.
5: शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों के साथ नाबाद 142 रन बना लिए हैं। पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर 3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में गोल टेस्ट मैच में पडिक्कल का भारत की ओर से नंबर 3 पर खेलना लगभग तय हो गया है। भारत की इस पारी के दौरान कप्तान रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। माना सुधार ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई खेमे से रमेश मेंडिस और असंका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विश्वा फर्नांडो और केशरा नुआनथा 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस वार्म अप मैच के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 15 अगस्त से गाल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और हम आपको बताएं कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए। सुदर्शन को यह चोट भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से 2 मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अनुसार वे श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है।
1: उधर भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स सदर्न रेप की तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके चलते उनका आगामी महिला 2020 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। सदर्न रेप ने आज पुष्टि की कि टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। और श्रोता आपको बता दें कि महिला 2020 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा।
0: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी का मैच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-1 से आगे है। इससे पहले शिलोंग ने आज के एक अन्य मैच में ग्रुप ई मैच में मुंबई एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनते हैं रिपोर्ट।
7: एवर ब्राइट संसाना के 2 गोल की मदद से शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल अभय गुरंग ने पहले हाफ के इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया। अभी इस झटके से मुंबई की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 2 मिनट बाद ही शिलोंग की तरफ से एक और जोरदार हमला हुआ। इस बार टेमिक

0: शुरुआत को बरकरार रखा है और अभी तक खेले गए मैचों के आधार पर वो ग्रुप ई में सबसे ऊपर है। उधर मुंबई दोनों मैच हारकर चार टीमों के ग्रुप में सबसे नीचे है। लैंगसिंग FC 4 अंक के साथ दूसरे और नॉन्कसे है SS&CC 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात पिकल बॉल पर। थाईलैंड के नाखोन पाथोम में एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकल बॉल AFP की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकल बॉल खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गों में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर-18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर-12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकल बॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी प्रशांत को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठा।

0: कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC

0: और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है।

0: उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली हरीश साल्वे एंड डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर रोंगन बैनर्जी वर आल्सो प्रेजेंट इन द सेरेमनी। ऑन द ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा एट आईआईटी दिल्ली। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
4: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU
5: टुडे एन अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन आवर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU। थ्रू दिस अग्रीमेंट द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज एट अ वेरी लो कॉस्ट इवन टू द स्मॉलेस्ट बैंक ब्रांचेस। This will cover cyber security, digital forensics, employee training and research. All these facilities will be made available together through a single bank in a box solution.
4: A bank in box se ho jayegi.
2: The Home Minister also launched a security operations center which will provide round the clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. The government today announced a series of strategic memoranda of understanding, MOUs, with key industry leaders and ecosystem enablers, which are Cash Free Payments, Darwin Dynamics, Vultra India, Cars 24 and the Council for Startup India, CSI. The MOUs have been signed by the Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion and Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with Cash Free Payments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Ultra India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure available to DPIIT recognized startups. Furthermore, the DPIIT has partnered with Cars 24 Services Private Limited to foster innovation, entrepreneurship and capacity building in India's mobility and automotive technology ecosystem. Meanwhile, the MOU signed with the Council for Startup India aims to strengthen support for DPIIT recognized startups by facilitating access to investment, strategic partnerships, mentorship, leadership development and global markets. India has achieved a major milestone in its clean energy journey, with the country crossing 300 gigawatts of installed non-fossil fuel-based electricity capacity. In a social media post, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi highlighted that India's renewable energy capacity has surged by 400% over the last 12 years. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. The Shiromani Akali Dal, at a meeting of its senior leaders in Chandigarh, had made this demand in another message. While replying to a post by Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, Mr. Rijiju said to implement women's reservation by the next general elections in 2020 and the delimitation exercise based on the latest available census figures should be taken up at the earliest. The students' agitation in Jharkhand over alleged irregularities in JPSC, JSSC and other competitive examinations is intensifying. The matter has now reached the Supreme Court, while talks between the state government and various student organizations are underway. More from our correspondent.
6: A petition has been filed in the Supreme Court seeking cancellation and reconduct of the 14th JPSC preliminary examination over alleged irregularities. The petition seeks an independent inquiry.

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों

0: की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई। जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है। स्व का बोध या स्वातंत्र बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902 दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917 पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती। ब्रिटिश

0: वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। तो मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवार जन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस पक्ष में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था। बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेपचा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेपचा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेपचा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I am acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग धैर्य समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर। टुडे वी शैल रीड टू यू अ स्टूपिड रीजनिंग ऑफ द सीएनसी।
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

स्वराज लेंगे। किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने

क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi today, Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present at the ceremony. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Parampragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navakranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Sciences University in tackling cyber and financial crimes. The Home Minister also launched a security operations centre, which will provide round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. The government today announced a series of strategic memoranda of understanding MOUs with key industry leaders and ecosystem enablers, which are Cash Free Payments, Darwin Dynamics, Vultra India, Cars 24 and the Council for Startup India. The MOUs have been signed by the Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with Cash-Free Payments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Ultra India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure

0: infrastructure available to DPIIT-recognized startups. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a memorandum of understanding aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, US President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Indian shuttler Ashmita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan tomorrow morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। ग्यारहवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिन की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है और दबाव में नहीं झुकेगी। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। गुरु नायडू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिहा का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कलाकारों के लिए और ज्यादा अवसर तैयार करने पर भी ध्यान दिया। बैठक में कलाकारों को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उसे बहाल करना भी एक अहम मुद्दा था। भारत ने ब्रिक्स देशों के कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की। बैठक में कलाकारों के अधिकारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉपीराइट वाले कामों के सही इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भोपाल ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य की सोच वाला ढांचा तैयार किया है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान, भाषाओं, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमेरिका गैर अप्रवासी वीजा पर काम करने वाले कुछ विदेशी कामगारों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोलने के लिए दी जाने वाली 60 दिनों की अवधि को समाप्त करने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो प्रभावित कामगारों को नौकरी समाप्त होने के तुरंत बाद देश छोड़ना पड़ सकता है। गृह सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव की संघीय प्रबंधन और बजट कार्यालय में समीक्षा जारी है। इसके बारे में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। 60 दिन की छूट अवधि वर्ष 2017 में विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोजने के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति देने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिका के सीनेट ने टॉड ब्लांच को अटॉर्नी जनरल के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील को अब न्याय विभाग की औपचारिक कमान मिल गई है। रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले सीनेट ने आज 50 के मुकाबले 49 मतों से ब्लांच की नियुक्ति की पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में पाम बॉन्डी को शीर्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद से ब्लांच पहले से ही कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में विभाग का संचालन कर रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमरीका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात ने आज सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जल डमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया है कि वो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर और रणनीतिक जलमार्ग का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए करके समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है। उसने ईरान से तुरंत ऐसे हमले बंद कर होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बिना किसी शर्त के फिर से खोलने को कहा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी धमकी दी थी कि वे जल डमरू मध्य से गुजरने वाले उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो तेहरान के दुश्मनों से जुड़े हों या ईरान के निर्देशों का पालन न करते हों। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला किया और 13 लोगों की हत्या कर दी। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने यह हमला मांबासा के पास बनाना इकोले गांव में किया। बुल्गारिया ने कहा है कि पड़ोसी रोमानिया से उसके हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन अवैध रूप से आया और ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास फट गया। प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने बताया कि बुल्गारिया सीमा के अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से लगभग 1 किलोमीटर दूर ड्रोन फटने की घटना हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यमन में मारिब और हदर मौत प्रांतों में हाल में हुए हुती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने बताया कि हुती विद्रोहियों के बार बार होने वाले हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। टॉमचो मितेई ने 266 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। गुरनायदू सेनापति ने 2 पदक जीते। उन्होंने कुल 265 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। आइए सुनते हैं करिश्मा राय।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ, मैं विकास।

गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत पहुंचा आप तक, और गाया था इसे भूपेंद्र साहब और लता मंगेशकर ने। बात इसमें थी आशियां की, और सच कहूं तो आशियां जहां पर हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, थोड़ी सी मुस्कान मिलती है, थोड़ी सी आंच मिलती है, और थोड़ा सा मिलता है धुआं। अगर मैं कहूं आपसे कि घर क्या होता है, तो आप शायद कहें कि चार दीवारी, जहां एक छत हो, एक दरवाजा हो। लेकिन आप एक बार फिर सोचिएगा, क्या वाकई ईंटों और सीमेंट से ही सिर्फ घर बनता है? यह घर बनता है एक एहसास से, जिसकी दीवारें होती हैं उसमें बसे रिश्ते, जहां होती है शरारतें, मनाए जाते हैं मिलकर त्योहार, जहां होता है रूठना और मनाना।

घर सूना सूना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूंगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

परसों एक रील पर मेरी नजर पड़ी और जहां एक पोता अपनी परदादी के हाथों को छूकर कहता है कि आपके हाथों में इतनी सारी लकीरें, इतनी सारी लाइनें, इतनी सारी झुरियां हैं। परदादी हंसती हैं और समझाती हैं और समझाइश भरे अंदाज में कहती हैं कि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा है। बच्चा बड़ी मासूमियत से उस हाथ को पकड़ता है और अपने करीब ले आता है, अपने पास खींच लेता है और ऐसे प्यार से चूम लेता है जैसे वो परदादी उसके प्यार का एहसास हो, प्यार का घर हो, अपनेपन की दीवार हो, जो दीवार अब पुरानी हो चुकी है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार। बीते

फिल्म का नाम था चरित्रहीन और लता जी की आवाज, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत और आर डी बर्मन साहब का संगीत घड़ी बता रही है कि बस अब आखिरी गीत मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन बात हो रही थी रिश्तों की और मैंने आपसे कहा कि घर उसी रिश्ते की एक कड़ी है जिसके हमें आसपास दीवारें दिखती हैं, रेत और गारा दिखता है, सीमेंट दिखता है, लेकिन घर वो नहीं होता। तो आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने घर पहुंचें या घर में मौजूद हों, तो इस बारे में जरूर सोचें कि इमारत में घर नहीं बसता, एहसास में बसता है, रिश्तों की गर्मजोशी में बसता है। गीत जो आपको घर का एहसास कराएं, उन गीतों में घर बसता है। पहाड़ अगर आपको घर का एहसास कराएं तो उसमें घर बसता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे चर्चा के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद निशेत और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: आइए श्रोताओं डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर
0: The benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data. And UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त सेंसेक्स और निफ्टी में आधे प्रतिशत से अधिक का उछाल आया मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क यूपीआई लेन देन होगा

0: Before we proceed any further, here's an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और निश्चित मुंबई से हमारी पहली कॉल आ रही है. इनका नाम है विशाल. विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए.
2: My question is related to foreign assets declaration and the tax to be paid on that. Now, I'm a foreign national, as in I have a foreign citizenship, and I wanted to declare the foreign assets that I have and pay the tax on that. The income is purely passive income in terms of FD interest and dividends, etc., from mutual funds. But I've been told that because I have not declared it earlier, there is a very high penalty and interest, etc., clauses on the same, up to 10 lakhs per annum for every year that the income or the assets have not been declared. And since this was legislation or something related to this was passed in 2017, the amount payable would be extremely high. So I mean, to the point that if it's actually true, then I would have to actually liquidate the assets just to even pay the tax on the same. So I would want to ask the expert with regards to this, as to is this correct and what are the interest and penalty provisions, etc., for this. And this was also said that because this was passed as part of black money, some curbing of that, so there could even be penal provisions. So even right. Though this is...
3: Okay, Vishal, we got your question and concern. I think what has happened, in terms of giving it a miss has happened now, because there is no provision, Vishal, where you can go back to so many years to revise this, first of all. There is a schedule in the income tax return, which is called Schedule FA, Foreign Assets. And there is also a schedule called Schedule FSI, which is Foreign Source Income. So if you're generating income out of those assets, you're supposed to be declaring income. And whichever country you reside in, there is a double tax avoidance treaty. You can save the tax. Anyway, your question is relating to non-declaring these particular assets in your return. So I would suggest, Vishal, that you can revise the return which has just been filed, first of all. So you can revise if there is no corresponding income and you're declaring it now, because there is no other way, you can go back so much. There is a provision, Vishal, of ITRU. It's called Income Tax Return Updated. But for filing that updated return, one has to declare extra income. So first year 25%, second year 50%, third year 60%. So I don't think simply because you're having an asset, you should declare additional income. So I think you don't have much choice. You'll have to forget what has happened then. But at least for the year which we are filing now, and if you've already filed, because we've run past the days now, 31st July was the date. So I would suggest for this year, which is 25-26, you revise your return. And in your schedule FA, you fill up the assets which you have overseas. And I'm assuming while answering, Vishal, that you are a resident at this point of time. If you are a non-resident, which is you've stayed outside the country for more than 180 days, you don't need to declare at all, because for foreign citizens, this is not required. If you are an Indian resident, resident means you've stayed in the country, then you need to declare. So based on what I said, you'll have to take a call. As for the historical part, the historical default, let me not scare you by giving penalties, because you've spoken about the penalties earlier. So I don't want to create a fear in you. But then, yes, you can revise this return, fill up, and just let it be a fresh beginning. In Hindi, we say, jab jaage tab savera. So we cannot, because you cannot revise earlier returns. There is only one provision where you can go to the PCIT, bring to his notice that I want to file. But that is mostly done when people have missed their refunds. In your case, there's no refund. So let us just start now. If there is a notice which you get, call us again. We'll try and suggest you an alternate as to how to sort it out earlier. But at least remove the default going forward, Vishal.
1: Dilli se hamare saath Prem ji jud rahe hain. Prem ji ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
4: Ji, sare team ko mera pranam. Guru ji ko bhi mera pranam.
3: Pranam ji, Guru ji, acha chaliye, pranam.
4: जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी सीक्रेट लोगों से. सर, ये जो हम लोग के जहाजे में जो कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं तो पहले सर ये युद्ध जोन में आता था जिसको हम लोग रिस्क जोन बोलते थे, हाई रिस्क जोन बोलते थे, कहीं कहीं सोमालिया समथिंग लाइक। लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं कि साहब हम इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे, इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। तो सर इसका क्या समाधान है सर, क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है जो सीकर जा रहे हैं, और अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर भेज रहे हैं यहाँ से कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज जून वाइज या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश डालने सर इसके।
3: देखिये प्रेम जी, जी आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं। ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व्ड हैं, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है। तो मुझे लगता है इसमें प्रेम जी, जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है। आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है। तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है। आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है। मुझसे सवाल प्राची और निशित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचे, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं। आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पर उस रूट पे ना जाएं, पर अब मजबूरी है, अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे। बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
1: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं, हम अमित की कॉल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: धन्यवाद सर। जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए, 2-4 सेक्टर आप बताएं, तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी, पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है, और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है, उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है क्या?
3: जितेंद्र जी एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, तो आपने जो जिक्र किया कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं। अच्छा कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू, तेल, साबुन वगैरह, इस प्रकार की फेस क्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं। और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे ही खाने का सामान लेके आए, बिस्किट, तो इनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं। खाने की आपने जो बात करी, खाने की भी हो गई, ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला, प्राइवेट बैंक देखिए नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर गिरे या कौन सा हुए। अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले, और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ एक के मिले जुले थे, बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा, और वो खुलेगा नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी
1: आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से, अमित है दिल्ली से। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: नमस्कार सभी को।
1: नमस्कार
6: सर, सबसे प्रश्न ये है मेरा सर।
3: जी
6: सर, अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो बात चल रही है हॉर्मोन्स ओपन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रहेगी? और दूसरा प्रश्न ये है सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिसपे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। सर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर कि 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
3: अमित, आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूज पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये तो हर किसी के मन में है और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रालय या कोई भी एक्सपर्ट इस पर टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे खुलेगा कि नहीं, देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपकी दूसरी बात पूछी, इसको हम बाइपार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हां, 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है,

0: स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन पांच देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है।
1: यस शरद जी, एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, द यूएस सेनेट हैज वोटेड टू अप्रूव अ बिल टू सैंक्शन रशिया एंड की बायर्स ऑफ इट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज चाइना एंड अदर कंट्रीज, क्लेमिंग दैट सच ट्रेड हेल्प्स फ्यूल द यूक्रेन वॉर। द बिल renamed as Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top five importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharaji would like to know, you know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
0: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on. So in all, 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports,
1: right,
0: supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay. But this 100% would really put us in problem. As I said, there are five countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there. I hope it doesn't happen, because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters.
1: Right.
2: श्रोताओं, भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई। आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1%, जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया। इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई। सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 494,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.21 रुपए पर बंद हुआ। इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मार्केट में दोनों नमस्कार जी, जैसे मैंने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, मगर डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है, क्या कारण है और क्या कहते हैं जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
0: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है, उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। भारत जिस प्रकार से

0: आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं, जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख देते हैं। बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए, आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा। दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये तो सबको, सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा। तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है, और ये हम सभी यहां जो बैठे हैं, हम सबके दिमाग में सवाल है, काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते, और अगर दे सकते तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए।
1: बिल्कुल, भिलाई से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मकर टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही उसका अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब आता, मतलब 4 लाख से कम है
0: जी,
2: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो ना करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
0: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है, और ये देखिए कहता है इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा। और मैं 2-4 चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे, 10 लाख सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, 1 लाख से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई है, तो ये भी देखनी पड़ती हैं। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही है और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए।
1: सिविलियन, ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है, फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4 लाख से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो हेलो
0: जी।
3: हाँ, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: जी रामकिशन जी,
3: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से ही है
0: जी।
3: हाँ, 10-5 हजार वैसे इनकम हो जाती है टोटल
0: जी।
3: तो 3 लाख मेरी है 3,20,000, तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी है नहीं है?
0: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी, बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी, फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है, और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटाया तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
4: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
5: नमस्ते मार्केट मदर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
5: सर, ये जो वी आर इंपोर्टिंग अबाउट 55% रिसेंट रिपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड ऑल्सो इट इज वेल नोन दैट अ लॉट ऑफ रिफाइनरीज हैव बीन डिवास्टेटेड इन रशिया बाय यूक्रेन, सो वी आर ऑल्सो री एक्सपोर्टिंग डीजल एंड पेट्रोल टू बैक, सो वॉट इज द रिफाइनिंग मार्जिन एंड हु आर द बेनिफिशरीज कंपनीज? Will there those shares be benefited if, will, as investor? ठीक है, वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, है पर नहीं है एक तरह से, हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं? क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है या आएगा, या फिर ये जो ट्रंप की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी? ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को, तो क्या उसके शेयर में फायदा है?

0: या नहीं है? सरकार ने तो शायद से नहीं किया होगा.
1: शंकर जी, देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज शंकर आई थिंक योर क्वेश्चन एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. व्हेयरएज ऑन वन साइड दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस under recovery from the customers when the crude oil price is high, the cost is high, and you're not charging as much, you know, there's under recovery on petrol, diesel, LPG. On the other side, yes, you're right, we are importing from Russia for export also. So, you know, it's a double-edged sword. So refining margin varies, but your question is private companies, yes. Like for example, the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries, and that can also refine the Western Texas intermediate oil, you know, which is the harder oil. It's not the sweet oil.
2: Sweet oil, yeah.
1: And that is very tough to refine. Mm-hmm. So we are one of the finest refiners in the world, and Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question. Whether to invest or not, I would advise that for some time till the matter settle, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
2: Right. And moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the NASDAQ Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,757. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
1: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, throughout the war. Mm. And I think this data will this data is a very interesting data, because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now, or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
2: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
3: Namaskar.
2: Namaskar.
3: Copy to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
1: जी,
3: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए
1: जी,
3: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके? अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है. जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने MBA मतलब एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है. डोंट यू थिंक सो?
1: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है. बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल, मैं टिक मारता हूं और आपके लिए कॉपी टू ऑल. आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है. अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है. टैरिफ आके लगता किस पे? खुद पे ही तो लगता है, इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है. आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी.
4: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए UPI मुफ्त बना रहेगा. एक वक्तव्य में PCI ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है. इसने ये भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. PCI ने कहा कि UPI की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और RBI टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं. PCI ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा. ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा.
1: जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2,000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे उनको देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया है, लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने।
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 0.5%, द वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद स्ट्रॉन्ग गेन्स बोर्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड द यूपीआई ट्रांजेक्शंस टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, क्लारिफाइज द एपेक्स डिजिटल पेमेंट्स बॉडी पीसीआई। एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द एंटायर टीम हियर। इट्स गुडबाय।
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM।
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ थी और इस गीत को सुनते सुनते अचानक मैं भी माइक के पीछे अपने आप को सिंगर समझने लगा और इस गीत के साथ गुनगुनाने लगा। कुछ गीतों को हमने हजारों बार सुन लिया हो, सुन सुन कर घिस दिया हो, हमें याद भी हो गया हो वो गीत, लेकिन घिसने के बाद भी उसमें से वो मधुरता, वो सुंदरता, वो खूबसूरती कभी कम नहीं होती। और शायद ये इन गीतों की खूबसूरती है जो इतने सालों बाद भी हमें अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर करती है। प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास, और हमारे और आपके साथ ये प्यारे से गीत।
1: मैंने कहा मिस

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस गीत से पहले आप तक एक अलग सा गीत पहुंचा था, मिट्टी में सोना, इस फिल्म का। और इस गीत को जब सुनते हुए एहसास हुआ कि किस तरह से इन गीतों में इंग्लिश के शब्द हुआ करते थे। बहरहाल घड़ी बता रही है कि अब विकास के जाने का वक्त हो चुका है, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेंगे। वे तिरुवन्नामलाई से सड़क मार्ग के जरिए पुदुचेरी पहुंचे और लोक निवास गए, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुदुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, Cars 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है कार्यक्रम पानी पे लिखी कहानी का, एक ऐसी कहानी जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर जाए। आज आइए सुनते हैं जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल।
1: तो आइए सुनते हैं ये कहानी हर श्रृंगार के फूल। प्राजक्ता आज दफ्तर के लिए जल्दी निकल पड़ी थी। दफ्तर में जरूरी काम था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने टैक्सी ली, पर वो भी जुलूस में अटक गई।
2: ओहो, कहाँ फंस गई? 10 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले मुझे दफ्तर पहुंचना जरूरी है। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आज सीईओ साहब भी आने वाले हैं। ओहो, ये ट्रैफिक का हाल, तंग आ गई मैं। ओहो, और कितनी दूर तक ऐसे ही चलना होगा भैया?
3: अरे मैडम, अभी क्या बोलेगा, ये हर साल का है। इधर जुलूस निकला, उधर ट्रैफिक जाम। ये मंदिर के सामने हर साल आज के दिन मस्त जतरा लगता है। अभी आज के दिन आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मैडम, लेकिन टेंशन नहीं लेने का मैडम, अपुन पहुंचा देंगे आपको।
2: हाँ हाँ, तुम तो पहुंचा दोगे, लेकिन एक काम करो भैया, आप टैक्सी रोको, मुझे यही उतार दो।
1: यूं ही बैठे बैठे इंतजार में और समय गवाना उसे गवारा न था। वो टैक्सी छोड़कर पैदल ही चल पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो गई। प्राजक्ता प्रेजेंटेशन दे नहीं पाई, सीईओ साहब से डांट पड़ी, सो अलग। कितनी तैयारियां की थी उसने आज के दिन के लिए। पूरे दिन प्राजक्ता का मन उदास रहा, ठीक से लंच भी न ले पाई। शाम को बुझे मन से घर पहुंची तो माँ ने पूछा,
4: अरे बन्नो रानी, तुमने बनारस का टिकट निकाल लिया कि नहीं?
2: ओह माँ, काम में मैं बिल्कुल भूल गई। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ।

दो हफ्ते पहले ही माँ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी। प्रेजेंटेशन के चक्कर में प्राजक्ता टिकट कराना भी भूल गई। उसके जी में आया, कह दे मंदिर तो यहाँ भी है, वहाँ जाना क्या जरूरी है। किंतु माँ की ओर देखा तो कह नहीं पाई, कह देती तो माँ उदास हो जाती। उनकी उदासी प्राजक्ता से देखी नहीं जाती।

ऐसा नहीं है कि ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है, किंतु आए दिन धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाली इन रैलियों से उसे झुंझलाहट सी होने लगी थी, जिस कारण से बनारस जाना भी उसने टाल दिया था। वो काम तो हो नहीं पाया, अब कम से कम माँ को दर्शन ही करा दूं, ये सोचकर उसने मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस के तत्काल के 2 टिकट बुक करा दिए। आज प्राजक्ता अपनी माँ के साथ वाराणसी में थी।

होटल ब्रॉडवे में थोड़ी देर आराम करने के बाद सारा शहर घूमते हुए अंधेरा हो चुका था। सड़कों की भीड़ गायब हो चुकी थी। किसी अनजाने शहर में रात का समय भी एक भय का कारण बन जाता है। शाम 4 बजे जिस टैक्सी से प्राजक्ता और उसकी माँ होटल से गंगा घाट गए थे, उसके चालक ने उनकी आपसी बातचीत से भांप लिया कि वे शहरी हैं और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चलते समय तो बात हुई थी 200 रुपए में वापस आने की, किंतु शाम तक बातें बनाकर उसने जबरन 1000 रुपए वसूल कर लिए। होटल से घाट की दूरी केवल 2 या 3 किलोमीटर थी, उससे ज्यादा की न थी। गंगा के घाटों और उससे सटे मंदिरों के सारे महत्वपूर्ण स्थल 2 या 5 मिनट की पैदल दूरी के आसपास ही तो स्थित हैं, और सारे दर्शन वो एक बार में पूर्ण कर चुके थे। लौटते समय दशाश्वमेघ घाट पर रुककर अंत में गंगा जी की आरती देखकर वे होटल वापस जाना चाहते थे, किंतु टैक्सी वाला जिद पर अड़ गया कि वो आरती होने तक रुकेगा नहीं। किराया लेकर वो तुरंत निकल जाना चाहता था। वे आज सुबह ही आए थे और कल तो लौटना था, इसलिए माँ इसी समय गंगा की आरती देख लेना चाहती थी। उनका रुकना अनिवार्य था और टैक्सी को जाने की जल्दी थी। प्राजक्ता के लाख कहने पर भी उसने रुकने से साफ इनकार कर दिया। शुरुआत में जो टैक्सी वाला उसे गरीब लग रहा था, वही शाम तक उसे लालची और चालाक लगने लगा। जिसकी दीन दशा पर अब तक उसे दया आ रही थी, उसकी चालाकी देखकर अब उसे अपनी उदारता पर गुस्सा आने लगा। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी और माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक लगने नहीं देना चाहती थी कि वो तय से दुगनी कीमत वसूल करके उन्हें होटल पहुँचाए बिना देर होने के बहाने चले जाना चाहता है। वो जानती थी कि वो गलत है, फिर भी उसकी गरीबी देखकर उसकी चालाकी पर कुछ भी कहना प्राजक्ता को उचित न लगा। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ टैक्सी से उतरकर गंगा के दर्शन कर प्रणाम करने में व्यस्त थी।

0: मन में कुछ सोच कर बिना बात बढ़ाए प्राजक्ता ने अपना ठगा जाना स्वीकार कर दिया और उसकी ओर 500-500 रुपए के दो नोट आगे बढ़ा दिए। करारे नोट जेब के हवाले कर टैक्सी वाला टैक्सी मोड़ कर तेजी से निकल गया। उसने आज ही माँ से सुना था,
1: अरे इतिहास से जुड़ा इलाका है, हम तो कह रहे थे कि हम पैदल ही चले जाएंगे, यहाँ तो लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही तय कर लेते हैं।
2: अरे माँ, तो ऐसी हालत में तुम्हें क्या मैं पैदल लेकर आती यहाँ पर दर्शन के लिए?
0: प्राजक्ता के दिन भर का निरीक्षण माँ के कहे सत्य को प्रमाणित कर चुका था। ऐसे में टैक्सी वाले को आज 2-3 घंटे की कमाई में ही 1000 रुपए मिल गए थे। इन रुपयों से वह अपने परिवार के न जाने कितने जरूरी काम निपटा लेगा, यही सोचकर ठगे जाने के बाद भी उसने संतोष कर लिया। आरती देखने में काफी समय हो गया था, रात को यहाँ वहाँ घूमकर वे काफी थक भी चुकी थी। अब बस यही इच्छा थी कि जल्दी से कोई टैक्सी मिले और वे होटल पहुँचे। दिन भर तो कई टैक्सी और रिक्शा यहाँ वहाँ खाली बैठे दिखते रहते, किंतु इस समय तो इनका जैसे अकाल ही पड़ गया था। अंधेरा बढ़ने के साथ सड़कों पर भीड़ भी कम होती जा रही थी। एक दो रिक्शे वाले दिखे तो, लेकिन वे होटल तक चलने को तैयार भी न हुए। अब तो स्थिति ये थी कि यदि कोई चलने को तैयार भी हो जाए तो वो उस पर विश्वास भी कितना करे। चिंता, डर, आशंका और माँ की डांट के आगे मौन रहकर रिक्शा खोजने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो मन ही मन भगवान को मनाने लगी, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर उन्हीं से सुरक्षा और सहयोग की प्रार्थना करने लगी। तभी पीछे से लगभग 70 की उम्र का एक बूढ़ा धीरे धीरे रिक्शा खींचता हुआ उनके पास आया। उसकी उम्र और उसकी दशा देखकर प्राजक्ता ने उसे अनदेखा करने की भरसक कोशिश भी की, पर शायद उसने दूर से ही उन्हें रिक्शा रुकवाते हुए देख लिया था। उसके पास आकर पूछा,
3: कहाँ जाओगी बेटी?
0: प्राजक्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वे दो लोग और वो बूढ़ा, उत्तर में देरी होते देख उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया,
3: अरे बताओ बेटा कहाँ जाओगी?
0: उसे लगा कि शायद इसे पैसों की जरूरत है, तभी तो जब अधिकांश रिक्शे वाले घर जा चुके हैं वो अभी भी अकेला सवारी की तलाश में रिक्शा लिए सड़क पर घूम रहा है। प्रत्युत्तर के लिए वो देर तक उनकी ओर देखता रहा। बड़े संकोच से प्राजक्ता ने कहा,
2: होटल ब्रॉडवे।
0: उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया,
3: ठीक है तो बैठ जाइए, छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं 20 रुपए दे देना।
2: अरे नहीं नहीं बाबा, हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है बाबा।
3: अरे बैठ जाओ बिट्टी, अब पैदल कहाँ जाओगी, अजनबी शहर है, जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। मैं तो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का ही काम करता हूँ।
2: क्या?
3: अरे तुम बैठोगी तो इस गरीब को एक एक बखत का खाने का दाना मिल जाएगा बेटा, 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में बेटा।
2: अच्छा ठीक है,
3: बोलो कहाँ छोड़ दूँ तुमको?
2: होटल ब्रॉडवे चलना है बाबा।
3: अरे तो बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल छोड़ देंगे, बैठिए अब बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए बहन जी, आप भी बैठिए, ज्यादा नहीं 20 रुपया दे देना बस, बहुत है।
2: क्या 20 रुपए?
0: प्राजक्ता का अंदाजा सही था, उस गरीब के लिए उस समय 20 रुपए भी रात के भोजन के लिए पर्याप्त थे। डूबते को तिनके का सहारा, एक पल को लगा जैसे नियति ने उन्हें एक दूसरे की सहायता के लिए ही भेज दिया है। वे रिक्शे पर बैठ गए और धीमी गति से रिक्शा खींचता वो चल पड़ा। प्राजक्ता ने मन ही मन भगवान से पूछा,
2: हे बाबा विश्वनाथ तेरी

प्राजक्ता मुंबई से अपनी माँ के साथ पहली बार वाराणसी आई थी। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। उसने बचपन से ही बनारस के घाटों का बड़ा नाम सुना था। मन ही मन बनारस की छवि उसके कच्चे मानस पर रच बस गई थी। चलते समय उसके मन में भी बाबा विश्वनाथ की काशी को देखने का बड़ा कौतूहल था। मन में श्रद्धा और जिज्ञासा लिए माँ के कहने पर उन्हें साथ लेकर वह वाराणसी आई थी।

0: लाखों भक्तगण शिव के नाम पर दक्षिण पश्चिम पूरे भारत सहित देश विदेश के कोने कोने से भगवान की कृपा पाने के लिए आस लिए चले आते हैं। आँखों देखे इस यथार्थ से अचंभित सारी बातों का चिंतन मनन करती हुई वो सामान्य रूप से गतिशील उस रिक्शे वाले के पैरों की ओर देखती रही। वो बड़ी मेहनत से संभल कर पैडल मारता हुआ रिक्शा चला रहा था। होटल पहुँचते ही रिक्शे से उतर कर सेवा पूर्ण कर देने की मुद्रा में वो विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसने प्राजक्ता से कहा,
1: ला बिट्टी आ गया। यही थोड़ी दूर रहता हूँ बिट्टी, यदि कल कहीं जाना हो ना तो बता देना, भूमसारे सवेरे सवेरे आ जाऊंगा।
2: बाबा, ऐसे तो हम सारा बनारस घूम चुके हैं, लेकिन माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो एक काम करना बाबा, तुम 7:30 बजे फिर से सुबह आ जाना, ठीक है?
1: बिटिया, हम बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता ना करो। अच्छा चलते।
0: अगली सुबह 7:30 बजे चाय नाश्ता निपटाकर वे कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। फोन रिसेप्शन से था। मैनेजर ने प्राजक्ता से पूछा,
3: मैडम आपने किसी भोले बाबा को बुलाया था क्या?
2: भोले बाबा? नहीं नहीं, हमने किसी भोले बाबा को नहीं बुलाया।
3: अरे मैडम, भोले बाबा वो रिक्शे वाला का नाम है।
2: हाँ, रिक्शे वाला बाबा बुलाया था, हम तैयार है, बस निकलने वाले हैं।
3: देखिए मैडम, वो तो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठा है।
2: अच्छा, हम बस तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं।
0: इस समय 7:35 हो रहे थे और वो पिछले 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि प्राजक्ता ने तो उसे 7:30 बजे आने को कहा था। बाहर निकलकर उसने रिक्शे वाले से पूछा,
2: बाबा मैंने आपको 7:30 बजे आने के लिए कहा था, फिर आप 6:30 बजे ही क्यों आ गए?
0: वो बड़ी सहजता से बोला,
1: अरे बिट्टी, हमारे पास कोई घड़ी तो है नहीं और न पढ़े लिखे हैं, अब क्या पता क्या समय हुआ है। सूरज देवता को देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं, है? अब हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए तो सूरज उगते ही यहाँ पहुँच गए। अब कोई बात नहीं, हमारी चिंता न करो।
0: दिन के उजाले में उसके चेहरे और हाथ की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थीं। ऊंचा कद, दुबला शरीर, गहरी छोटी आँखें, धूप में झुलसी हुई काली चमड़ी और ये माथे पर तिलक की जगह कैसा निशान है।
2: अच्छा बाबा, आपका नाम भोले बाबा है?
1: भोले बाबा कह लो, कोई कुछ भी कहता रहता है, गरीब का कोई नाम नहीं होता है बिट्टी, गरीब तो ये आदमी होता है, ये आदमी, ये रिक्शा वाला, बस।
0: जगह जगह सिला हुआ कुर्ता, मैली सी धोती, पैरों में टूटी हुई चप्पल, साथ में पुरानी सी रिक्शा और उखड़े हुए किनारे, उसका और उसके रिक्शे का मुआयना कर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में भी वही सवाल था, क्या इस रिक्शे में बैठना ठीक रहेगा? बूढ़ा गरीब ही नहीं, अत्यंत दरिद्र भी था। उसने हाथ के इशारे से बताया कि यहीं कुछ दूर पर मेरा घर है। उसके इंगित दिशा की ओर उन्होंने देखा तो होटल से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे पर एक टूटा हुआ झोंपड़ा दिखाई पड़ा। झोंपड़े के आसपास हर सिंगार का एक पेड़ था। इतना सब देखने और जानने के बाद ना कहने का तो कोई कारण ही नहीं था। प्राजक्ता ने संभाल कर माँ को रिक्शे पर चढ़ाया। सीट के किनारे की टिन जगह जगह से उखड़ी हुई थी। चढ़ते समय कपड़ों के किनारों के फंसने और फटने के डर से वो भी बहुत संभल कर बैठी। इस बीच वो रिक्शे को कस कर पकड़ा रहा। अपने रिक्शे की स्थिति को वो उनसे बेहतर जानता था। उनके बैठ जाने के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे के हैंडल पर टंगा हुआ अपना गमछा निकाला और बड़े धैर्य से गमछे की गांठ को खोलकर उसे प्राजक्ता की ओर बढ़ा दिया। प्राजक्ता ने चौंककर पूछा,
2: ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हैं आप?
0: गमछे में हर सिंगार के ढेर सारे ताजे और खुशबूदार फूल थे। उसके इस व्यवहार से प्राजक्ता को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उन फूलों को लेने से इनकार कर दिया। उसके इनकार पर वो थोड़ा दुखी होकर बोला,
1: बिट्टी ये फूल आज ही सुबह तोड़े हैं, आप बाबा के धाम जा रही हो तो मेरी ओर से इन फूलों को शिव जी के चरणों में चढ़ा देना बिट्टी।
2: क्या?
1: नहीं नहीं, गलत नहीं समझो, गलत नहीं समझो, मैं समय पर नहा धो नहीं पाता ना बेटा, अब कभी नहा धो भी लूं तो पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, यही एक जोड़ी कपड़ा है, यही धोता हूँ यही पहनता हूँ। अब कभी नहाता हूँ तो कभी कपड़ा धोता हूँ। बस जब भी कभी कोई सवारी लेकर धाम में आता हूँ ना, तो बस दूर मुखदार से हाथ जोड़कर माथा टेक लेता हूँ। आपने कहा था कि आज सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाएंगी, इसीलिए सवेरे जल्दी उठकर ताजे फूल तोड़कर लाया हूँ। हाँ, इन्हें मेरी तरफ से उनके दरबार में चढ़ा देना, मेरी हाजिरी लग जाएगी मिट्टी। हाँ, अरे मेरे भक्ति भाव के ये पुष्प उनके चरणों में पहुँच जाएंगे। बस न जाने कभी कृपा हो जाए मेरे ऊपर भी है? वो तो काशी के नाथ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की कृपा से रोजी रोटी मिल रही है बेटा। बस मना मत करो बेटा, ले लो ले लो।
0: बूढ़ा शिवजी की अदृश्य कृपा पर पूर्ण रूप से कृतज्ञ था और आभार में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था। उसकी इस दयनीय दशा को देखने और अब तक की बातें सुनने के बाद प्राजक्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे आगे कुछ कहे या पूछे।
2: हाँ बाबा बिल्कुल, लाइए दीजिए ना, मैं इन्हें संभाल के रख लेती हूँ।
0: प्राजक्ता ने एक पन्नी में सारे फूल समेटकर पर्स में रख लिए। बूढ़ा गंभीर मुद्रा में रिक्शे पर बैठकर पैडल चलाने लगा। वो सड़क के उस पार पहुँचे ही थे कि उनकी रिक्शा में कुछ खटकी आवाज आई और रिक्शा रुक गया। उसने पूछा,
2: अरे क्या हुआ बाबा, ये आवाज कैसी थी?
1: कुछ नहीं मिट्टी, कुछ नहीं, चेन उतर जाती है, अब अभी अभी ठीक किए देता हूँ, अभी ठीक किए देता हूँ, देर नहीं होगी।
0: दो मिनट में कुछ ठीक कर वो पूर्ववत रिक्शा चलाने लगा। विश्वनाथ गली तक पहुँचने में यही क्रम दो तीन बार चलता रहा। वो जानता था कि उसके रिक्शे का मर्ज क्या है, किंतु वो उसका इलाज कराने में असमर्थ था, इसलिए खुद ही कुछ काम चलाऊ उपाय करके आगे बढ़ता जाता। मुख्य मंदिर मार्ग पर पहुंचकर वो एक किनारे रिक्शा लेकर खड़ा हो गया। प्राजक्ता ने उसे 500 रुपए देने की कोशिश की, किंतु उस संतोषी जीव के लिए कल के दिए 50 रुपए ही बहुत थे, इसलिए उसने आज कुछ भी लेने से इनकार कर लिया। प्राजक्ता चाहती थी कि वो उन रुपयों को ले ले, और वो था कि मेहनत से अधिक कुछ भी लेने के लिए तैयार न था। कुछ पल ठहर कर उसने कहा,
2: ले लीजिए न बाबा, इनकार ना कीजिए।
1: अरे बिट्टी, जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं?
2: अच्छा भोले बाबा, मत फैलाओ हाथ, पर बताओ अगर आपकी बेटी देती तो आप ना लेते? बिट्टी भी कहते हो और लेते भी नहीं।
1: अरे बिट्टी, बेटिया तो तुम हो ही मेरी, इसीलिए तो मैं आया हूँ।
2: क्या मतलब?
1: मेरा मतलब है कि तुम भगवान के दर्शन करने जाओ। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, पट खुलने वाले हैं।
0: मुख्य द्वार से प्रवेश कर भीतर आंगन के उस पार मुख्य मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि पट अभी खुला ही नहीं है। कल जिस माली ने उससे फूलों की बड़ी माला लाने को कहा था वो अभी तक नहीं आया था। समय हो चुका था, वो आता ही होगा, ये सोचकर प्राजक्ता भीतर पट के ठीक सामने बैठ गई। जो भक्त पहले से पहुँचे थे वे आँख मूंद कर संकीर्तन

वे भी आंख मूंद कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में प्राजक्ता बाहर आंगन की ओर देखती, किंतु फूल लेकर अभी भी प्रमुख माली नहीं पहुंचा था। मंदिर का पट खुलने ही वाला था। कल उसने कहा था कि पट खुलने से पहले ही पहुंच जाता है, किंतु आज कोई अता पता न था। वो मंदिर का इकलौता माली था। उसके न आने से सारे भक्तगण खाली हाथ ही दर्शन को विवश हो गए।

भीड़ इतनी हो चुकी थी कि आंगन की ओर देख पाना मुश्किल हो गया था। वे दोनों बहुत आगे पट के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे। पट खुला, बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगने लगे। आरती शुरू होकर अपनी गरिमा के साथ चलती हुई खत्म हो गई। जय घोष होने लगे। उसने आसपास देखा, किसी के हाथ में फूल माला नहीं थी। ये स्पष्ट था कि माली अब भी नहीं आया है। उस दिन आरती के बाद श्री काशीनाथ को फूलों की कोई माला न पड़ पाई। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज लौटते समय मैं प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाई।

यहाँ तो सोचा था चलने से पहले बेला गुलाब की एक बड़ी सी माला चढ़ाऊंगी, और यहाँ तो आज अर्पण के लिए एक फूल तक नसीब नहीं। इस विषय में सोचते ही उसे उस बूढ़े के दिए हुए हर सिंगार के फूल याद आए। उसने पर्स में से रुमाल में लिपटे हुए फूल निकालकर अंजूरी भरकर हर सिंगार के ताजे फूल शिवलिंग पर बिखेर दिए, कुछ पंडित जी को दे दिए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शिवजी को अर्पित कर दिया। उस दिन श्री काशीनाथ को अपने उसी भक्त के फूल स्वीकार करने थे जो अपने आप को हर कहीं से दीनहीन मानता था, जो मंदिर में भीतर प्रवेश न कर बाहर से ही शीश झुकाकर अपने मालिक को प्रणाम कर लिया करता था। प्रसाद लेकर वे बाहर निकले, माली अब भी नहीं आया था।

0: उन अदृश्य भावों और संवादों को महसूस करके वो रोती जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर आकर देखा तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। गली के किनारे खड़े उस रिक्शे की ओर इशारा करके उसने बगल की दुकान से सटे बेंच पर बैठे लोगों से उस बूढ़े के विषय में पूछा तो उन लोगों ने कहा,
1: नहीं मैडम, हमने तो किसी रिक्शे वाले को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा।
2: ये क्या कह रहे हैं आप, उसका रिक्शा तो यही खड़ा है, फिर आपने कैसे नहीं देखा उन्हें?
1: मैडम जी सही कह रहा हूँ, हम इधर ही रहता हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और कोई रिक्शा वाला आपको छोड़ गया होगा मैडम जी।
2: ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई रिक्शे वाला?
0: वो समझ चुकी थी कि दुकानदार से तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। काशी नगरी में जहाँ संत कबीर दास जी ने घट घट में भगवान के बसे होने का ज्ञान दिया था, वही पाठ वो बूढ़ा आज प्राजक्ता को पढ़ा के गया था।

कैसी लगी आपको आज की कहानी पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। हमें दे इजाजत, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज तुम्हें देखना कैसा होता है। एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11:50। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज के साथ।

वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं सारे काम छोड़कर आप ही से बातें कर रही हूँ, और अगर आप किसी काम में लगे हैं तो ये फिर मेरे साथ नाइंसाफी होगी। जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना दिल एक मंदिर फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और लिखा था बलदेव राज ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने। फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म के सभी गाने हिट थे। अगला गीत अभी के लिए आशा जी की आवाज़ में।

वैसे मैं अपने कंगन की बात करूं तो वो इसलिए खनक रहा है क्योंकि सावन का महीना है और इस सावन के महीने में चूड़ियों के साथ साथ दिल भी खनकता है। गीत आप सुन रहे थे आशा जी और गीता दत्त की आवाज में और फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। संगीत SG बर्मन साहब का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और इस फिल्म को लिखा था नवेंदु घोष और व्रजेंद्र गौड़ ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, सुनील दत्त, नासिर हुसैन, विपिन गुप्ता, मदनपुरी ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे जो आज भी सदा बहार हैं शैलेंद्र साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम दो आंखें बारह हाथ, संगीत था वसंत देसाई का और गीतकार थे भरत व्यास। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये इस फिल्म का निर्देशन किया था वी शांताराम ने और इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है।

अगला गीत लता मंगेशकर, अगला गीत आप तक सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, वो कहता रह गया मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। 101 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:39 और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ पे।

कुसूर तो कुछ भी नहीं है, या तो किसी का दिल लिया होगा या फिर किसी को दिल दिया होगा। और इसकी सजा पता है क्या होती है? ताउम्र उन्हीं दी रातें। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मिस मैरी और संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म का को निर्देशित किया था एलवी प्रसाद ने। मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, किशोर कुमार और जैमिनी गणेशन ने। अगला गीत फिर से एक जादू भरी आवाज़ में लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ। अगला गीत अभी के लिए

ये मसला ही तो हल नहीं होता कि मोहब्बत कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, वरना ज़माने में मोहब्बत को समझने के लिए किताबों की कमी कहाँ है। हम सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत जीते हैं, महसूस करते हैं और चले जाते हैं। हम सिर्फ अपने हिस्से का मोहब्बत जोड़ पाते हैं, लेकिन वो पूरी जो एक कहते हैं मुकम्मल परिभाषा है वो अलिखित ही रह जाती है, महसूस किए बिना ही रह जाती है। गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। ये फिल्म आई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्माण किया था एस ए

सागर ने, और लिखा था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अगला गीत आयशा जी और रफी साहब की आवाज़ में, आप ही के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को

0: संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे और जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, हालांकि जानता वो भी नहीं कि कैसे जाती है बारिश एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हम दोनों ने कर ली है पार वो पहली सीढ़ी जिसे दुनिया असंभव कहती है। सौ.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर बंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सावन का महीना है तो बातों की बारिश और गीतों की बारिश दोनों आप पर जरूर होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। कभी कभी जब मैं ऐसे गाने सुनती हूँ ना तो सीधा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गांव की मिट्टी में पहुँच गई हूँ। खेत हैं, खलियान हैं, बारिश है और वहाँ कोई रुकावट नहीं है। फिर मुझे अपना शहरीपन एक बेमानी सा लगता है। आप मेरे खास हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ना मैं शहरी लिबास में और शहरी भाषा में खुद को एक बहरूपियन सी लगती हूँ। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

अगर आपकी जिंदगी में भी किसी शहरी बाबू ने या लहरी बाबू ने आपकी नींदें उड़ा रखी है तो फिर नाचना तो बनता है। दिल एक है, जिंदगी एक है और प्यार का मौका भी एक है, तो फिर सोचना कैसा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि गाना आप ही की पसंद का।

वैसे ये बात तो सच है कि जब प्यार का जादू छाता है तो फिर सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक तरफ गानों का जादू है और दूसरी तरफ सावन का जादू है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बचना बचाना तो छोड़िए, संभलना भी मुश्किल हो जाता है, है ना। जब सावन का जिक्र छिड़ा है, बारिश का जिक्र छिड़ा है, तो क्यों ना बारिश के गाने सुन लिए जाए, दो गाने बैक टू बैक आप ही के लिए।

तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, मोहल्ले की कारों पर तुम्हें एक नाम दिखेगा। हमारे तुम्हारे बीच के जब बादल छटेंगे, प्रीत की धुन में बह उठेंगी कल कल करती नदियाँ। मेरे सीने पर तुम फहराओगी अपनी उंगलियाँ, तुम देखोगी मुट्ठी भर रेत जमा है मेरे सीने पर, जिस पर लिखा है तुम्हारा नाम। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 47 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार में आवाज़ ऊंची आवाज़ में दावे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर सामने वाला अनाड़ी हो तो उसे तो प्यार का टेबल समझाना ही पड़ेगा ना, कि मन रात में बहका बहका क्यों होता है, क्यों चांद सितारों में हमें महबूब नज़र आता है ना। अगला गीत आप ही के लिए।

दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुक। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का

0: उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organised by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Mr. Shah arrived in Puducherry on a two-day official visit yesterday. He reached Puducherry by road from Thiruvannamalai and proceeded to Lok Nivas, where he met and held discussions with Lieutenant Governor K. Kailashnathan. He was received by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy and his cabinet ministers and legislators, BJP State President V. P. Ramalingam and former Speaker R. Selvam. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 p.m., a member of the government panel said, after the panel held meeting with Chief Minister Hemant Sorin, apprising him about the progress achieved during the dialogue with the protesters. The high-level talks between the state government and different groups of protesting students was held yesterday at the state guest house in Ranchi in a positive atmosphere. To ensure greater transparency, the government has also issued an official feedback email ID through which students and all its stakeholders can submit their suggestions. In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pehelgam routes from August 9 in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. The Divisional Commissioner said the Chhadi Mubarak will proceed through the traditional Pehelgam route and mark the culmination of this year's Yatra on August 28. So far, more than 480,000 Yatris have performed darshan at the Holy Cave Shrine. The United States is reviewing a proposal to eliminate the 60-day grace period that allows certain foreign workers on non-immigrant visas to find new employment after losing their jobs. If implemented, the move could require affected workers to leave the country immediately after their employment ends. The proposal from the Department of Homeland Security is currently under review at the Federal Office of Management and Budget. And that is the end of this news bulletin.

अजनबी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत से मकाम हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे किसी से कम नहीं होते।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में।

दोस्तों, एक बार गीतों को लेकर फिर से स्वागत है आपका आपकी दोस्त वंदना चुग के साथ कार्यक्रम हमराही के अंतर्गत।

बुनियाद फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, आपका कोई इंतजार बेकरारी से कर रहा हो तो कितना अच्छा लगता है, और इंतजार तो प्यार करने वाले ही करते हैं।

एतबार फिल्म से अभी आपने गीत सुना आशा भोंसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, शब्द रचना हसन कमल की थी और संगीत बप्पी लहरी का। अगला गीत आप सुनेंगे शगुन फिल्म से, सुमन कल्याणपुरा और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है। गीत के बोल तैयार किए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने।

अब अगला गीत तीन देवियां फिल्म से आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म से गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है लाट साहब फिल्म से। शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत से शब्द रचना शंकर जयकिशन की है और संगीत से सवारा है वो बाद में बताएंगे।

मैंने आपसे कहा था कि मैं इस फिल्म में शब्द रचना बताऊंगी और आपको बता दी थी संगीत बताना था। शब्द रचना शंकर जयकिशन की थी और संगीत से संवारा था शैलेंद्र ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे रात और दिन फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ है। शैलेंद्र ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन की संगीत से संवारा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापारिक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Vice President C.P. Radhakrishnan will today participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag at

अरुणिमा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है दोस्तों, और गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त वंदना चूग। नमस्कार।

0: कटी पतंग।
1: फिल्म से भी आपने गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे अनपढ़ फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का। दोस्तों, बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो अपना प्यार किसी के प्रति बनाए रखते हैं, और वो खुश नसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के काबिल होते हैं।

0: दोस्तों, बहुत बार बहुत सी चीज़ें हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाती हैं और फिर हमें लगता है कि शायद हम इसके काबिल थे। हम तो चाहते हैं कि आपके सपने भी ऐसे पूरे होते रहें और आपको उम्मीद से ज़्यादा मिले।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हरदम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

गाइड फिल्म से गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: रुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से गीतों के साथ स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चौक।

यकीन फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे गूंज उठी शहनाई फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, भरत व्यास के बोल हैं और संगीत वसंत देसाई का।

और एक छोटा सा अंतराल। दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत चल रहे हैं और गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

बहुत बार आप कई लोगों से मिलते हैं तो आप सोचकर ये फील करने लगते हैं कि उनका मिलना आपकी जिंदगी में बहार ला रहा है और अच्छा भी साबित हो रहा है। स्वीकार किया मैंने फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, निदा फाजली की रचना थी और उषा खन्ना का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे कर्तव्य फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंतज़ार ही करते रहते हैं, और इंतज़ार करने वाले जिनकी इंतज़ार होती है वो नहीं आते। और अब अगला गीत बड़े दिल वाला फिल्म से आप सुनेंगे, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आर डी बर्मन का।

दोस्तों, अब करुणा कार्यक्रम में, अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे आखिरी रचना हाथ की सफाई फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत है, गुलशन बावरा की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। बहुत बार हम एक दूसरे से वादा कर बैठते हैं कि हम जरूर निभाएंगे, लेकिन कारणवश अगर नहीं निभा पाते या परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वादा वही करें जो निभा सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विन से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे दी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे दी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटे दी आइवर की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R Selvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृहमंत्री मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्गों के संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक हो गया है, जिसका काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged as a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate

राधा का भी श्याम बोलो, मीरा का भी श्याम, ये तो प्रेम की बात है और हर किसी का प्रेम अद्भुत और अनोखा है। गीत गाता चल फिल्म से ये रचना आपने सुनी आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगली रचना आप सुनेंगे कोहिनूर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना है और नौशाद का।

दोस्तों, इस संसार में सत्य ही जीवन है, जिसके आधार पर पूरा संसार टिका हुआ है।

भोर सुहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आपकी दोस्त वंदना चौक के साथ। और बहुत बार दोस्तों हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे बात नहीं करता या करती, किसी को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के चाहने या ना चाहने से, बात करने या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में हर किसी के काम हो जाते हैं।